इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की। वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में। कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में। कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हर्ट टच.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर, कीमती और साफ सुथरा आईना है. आप उसमें अपना चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि उस आईने के ऊपर किसी ने एक बहुत गाढ़ा और मटमैला पर्दा डाल रखा है. अब आईना चाहे जितना भी चमकदार हो, जब तक वह पर्दा उसके सामने से नहीं हटेगा, तब तक आप लाख कोशिश कर लें, आपको उसमें अपना अक्स दिखाई नहीं दे सकता. चेहरा देखने के लिए आईने को बदलने की नहीं, बल्कि उस पर्दे को हटाने की जरूरत है. हमारा यह जो दिल है, हमारा यह जो हृदय है, यह भी विधाता का बनाया हुआ एक ऐसा ही अनमोल आईना है. हम परमात्मा को, शांति को पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, जबकि वह इसी भीतरी आईने में बैठी हैं. अफसोस कि हमारे मन की दुविधाओं ने इस पर एक ऐसा मोटा पर्दा डाल दिया है कि हमें भीतर की सच्चाई दिखाई ही नहीं देती. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम जागृत सूत्र. हृदय भीतरी आरसी मुख देख्या नहीं जाई. हृदय भीतरी आरसी मुख देख्या नहीं जाई, मुख तो तब ही देखिए जे मन की दुविधा जाई.

टाइम। श्रोताओं, कबीर साहब अध्यात्म का एक अत्यंत गहरा नियम समझाते हुए कहते हैं, हृदय भीतरी आरसी। तुम्हारा यह जो हृदय यानी हृदय है, इसके भीतर यानी भीतर वह आरसी यानी परमात्मा के साक्षात्कार का असली दर्पण मौजूद है। तुम्हें सत्य के लिए बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख देखा नहीं जाए, लेकिन विडंबना यह है कि उस दर्पण के पास होने के बाद भी तुम्हें उसमें अपनी आत्मा का, उस परम सत्ता का मुख यानी स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। तुम अपनी ही असलियत से अनजान बैठे हो, तो वह मुख कब दिखाई देगा? अगली पंक्ति में कबीर इसका सीधा उपाय बताते हैं। मुख तो तब ही देखिए, उस चैतन्य सत्ता का असली चेहरा तो सिर्फ उसी एक क्षण में देखा जा सकता है जे मन की दुविधा जाए। जब तुम्हारे मन की दुविधा यानी तुम्हारे भीतर का सारा संशय, सारा द्वंद्व और यह करूं या वह करूं, संसार चुनूं या परमात्मा चुनूं का यह जो दो मुहापन है, वह पूरी तरह समाप्त हो जाए, जब मन पूरी तरह एकनिष्ठ और शांत हो जाता है, तभी वह दर्पण काम करता है। यह दोहा वेदांत के अद्वैत सिद्धांत और चित्त की एकाग्रता का महासूत्र है। दुविधा का दार्शनिक अर्थ है द्वैत, यानी खुद को परमात्मा से अलग मानना और संसार के नश्वर सुखों में और शाश्वत सत्य में लगातार डूलते रहना। जब तक मन में यह दुविधा है कि संसार ही मेरा असली घर है, तब तक बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि हृदय शुद्ध हैं, आत्मा जागृत हैं, बस मन की चंचलता और संशय का पर्दा बीच में अड़ा है। जैसे ही साधक सुमिरन और विवेक के बल पर इस दुविधा को, इस भीतरी भटकाव को विसर्जित कर देता है, वैसे ही बुद्धि का पर्दा हट जाता है और आत्मा अपने ही भीतर परमात्मा के परम प्रकाश का दर्शन कर लेती है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत होकर अपने मन के द्वंद्व को टटोलिए। हर रोज कितनी दुविधाओं में जीते हैं। एक तरफ हमारा मन भगवान की तरफ खींचता है और दूसरी तरफ हम संसार की ईर्ष्या, नफरत और लालच के जाल में भी फंसे रहना चाहते हैं। मुख में कुछ और, मन में कुछ और, यही वह दुविधा है जो हमारे भीतर आईने को धुंधला कर रही है। आज कोशिश कीजिए इस दुविधा के पर्दे को हटाने की, अपने इरादों में, अपनी प्रार्थना में और अपनी नियति में पूरी तरह साफ और एक निष्ठ बनिए। जब मन की यह दुविधा शांत होगी, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी हृदय रूपी आरसी में आपको उस राम नाम का, उस परमेश्वर का अनमोल चेहरा साफ साफ मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

श्री गोसाल नियतिवाद का प्रवर्तक, उसका तत्वज्ञान तो एक तरह का देववाद कहता है, बनना बिगड़ना ये किसी के भी हाथ नहीं होता, घटना घटती ही रहती है, कोई भी दुख न नष्ट कर पाता है न बढ़ाता है। अजीत केश कंबल उच्छेदवादी था, विज्ञानवाद यह उनका तत्वज्ञान। उन्होंने कहा, अर्थ नहीं है यज्ञ होम हवन में, तथा आत्मा को भी स्वर्ग नहीं है, नरक भी नहीं है, संसार की पीड़ाओं से आत्मा की मुक्ति नहीं है, 84 लाख योनि जन्म मृत्यु का फेरा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पकुत कच्चायन अन्योन्यवाद का प्रवक्ता कहता है, शरीर पृथ्वी आप तेज वायु सुख दुख से बना है, और आत्मा सप्त महाभूतों से, वह स्वयंभू और शाश्वत होता है, विनाश नहीं होता उसका किसी से भी। संजय बेलपुत्ता विक्षेपवाद का प्रवर्तक कहता है, अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य को भोगना नहीं पड़ता, मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व ही नहीं होता। निगंठनाथ पुत्र चातुर्य मनसवरवाद का प्रवर्तक, इनका मानना है आत्मा का पुनर्जन्म होता है दुष्कर्म के कारण, दुष्कर्म टाला जाए इसलिए हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, साधन संपत्ति का संग्रह न करना। समकालीनों का तत्वज्ञान, तथागता तुझे कुछ संदर्भ में अपूर्ण और कुछ हद तक अज्ञान सा लगा, पूर्ण कश्यप और पकुद कच्चायन सामाजिक जवाबदारी से दूर जा रहे हैं, परिणाम न भोगते हुए हत्या करने तक की उनकी मजल की पहुँच है। उनके इस तत्वज्ञान से मनुष्य तकदीर का गुलाम बनेगा, मक्खली गोसाल के स्वीकार करने पर खाना पीना और मजा करना, अजीत केश कंबल के विचारों से जीवन भटकता रहेगा, संजय बेलपुत्ता के कारण सिर्फ सन्यास और तपश्चर्या में उलझा रहेगा जीवन, निगंठनाथ पुत्र के कारण तत्वज्ञान ही मनुष्य की भलाई का, उनके कल्याण का, उनकी आजादी का, आजाद विचारों का। मनुष्य बुद्धिवादी हो वैसे वह सद्गुणी भी हो, कर्मकांड विरहित हो, प्रज्ञा उसके पास जीने के लिए नैतिकता का अधिष्ठान हो विवेक और विज्ञान दृष्टि में उनके। बा तथागता तूने अध्यात्म को परखा विज्ञान और विवेक से, संस्कृति संवर्धन के लिए संस्कृति की बलशाली धारा तूने तैयार की, और पंचशील ने नैतिकता का पाठ पढ़ाया, और अष्टशिला ने तेरे नैतिक अन्वेषण को अधिक सूक्ष्म बनाया। तू नहीं था तीव्र भाव से उच्छेदवादी या कर्मकांडी, तेरा मार्ग बीच का मध्यम मार्ग, अध्यात्म से कर्मकांड हटाकर विद्यानिधिष्ठित तर्कपूर्ण विवेकी दृष्टि का, इसीलिए तुम उच्छेदवादी नहीं हो, ना ही अंधश्रद्धालु एवं धर्मांध। तेरा मार्ग मानवता के विकास का, मनुष्य कल्याण का मध्यम मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मनुष्य के संस्कार का मानवतावादी। बा तथागता तेरा धम्म सिखाता है नैतिकता, और उगाता है फसल प्रज्ञाशील करुणा का।

0: ओम शांति, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि खुशी शायद होंठों तक सीमित है, चाहे शायद मेरी हंसी तक सीमित है, चाहे मैं जब बच्चों के साथ होता हूँ तो जो खिलखिलाहट होती है वहीं तक सीमित है, लेकिन वो हंसी है, खिलखिलाहट है। खुशी मेरे अंदर की बात है, मेरे अंदर की वो फीलिंग है जो मैं खुद क्रिएट कर पाता हूँ। अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि लगता था कि यही सब बातें जो बाहरी रीति से हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, उसी पर खुशी निर्भर करती है, और निर्भरता बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस श्रृंखला में जहाँ हम बातें करने लगे हैं, वहाँ ये बात समझ में आती है कि ये मेरी अपनी क्वालिटी भी है और मेरी अपनी क्रिएशन है। मज़ेदार बात यह है कि उसे क्रिएट करने के लिए मुझे अपने थॉट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं संकल्प कर रहा हूँ, जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं। अब थॉट्स आ रहे हैं या मैं उन्हें क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी एक नई वोकैबुलरी के साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कुछ और बातें हैं जिनका हम रिकैप करेंगे, लेकिन पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। मैं थॉट तक तो ले आई कि जब हमने उस फीलिंग को देखा कि खुशी कहाँ है, मैंने देखा कि ये सब में ढूंढ रहे थे, ये सब में समझा वो नहीं है, क्योंकि हमने जब अपने आप को चेक किया तो वो खुशी मेरी अपनी क्रिएशन मुझे समझ में आई, और मेरा थॉट मेरी उस फीलिंग को क्रिएट कर सकता है। पॉजिटिव खुश वाला थॉट जो था वो क्रिएट करता है। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, और ये जो इतना पावरफुल चीज़ है, इतनी शक्तिशाली वस्तु मेरे पास है, अनुभव कहें या कुछ भी कहें, एनर्जी कहें, वो कैसे क्रिएट होता है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो थॉट्स क्रिएट करती हैं?
1: हमने जैसे देखा कि परिस्थितियाँ आती हैं, लोग ऊपर नीचे कई बार हमारे साथ व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, एंड थिंग्स वर बिकमिंग चैलेंजिंग, अनप्रडिक्टेबल। यू नो, सडनली समबडी बिहेव्स इन अ वेरी अनप्रडिक्टेबल वे एंड आई डोंट नो हाउ टू रिस्पोंड। तो कभी ना कभी ये एक थॉट चलना शुरू हुआ कि आखिर इस तरह से अगर जीवन चलती जाएगी तो देर इज जस्ट नो वे आई कैन बी हैप्पी। तो फिर हमने जो हैप्पीनेस के ऑपोजिट वाली फीलिंग्स हैं, सॉरी, चाहे वो एंग्जाइटी है, वरी है, उनको स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि यस, सिचुएशंस आर चैलेंजिंग, तो सिचुएशन पर थॉट डिपेंडेंट है, तो यस, हमेशा खुश रहना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हमेशा सिचुएशन फेवरेबल नहीं होने वाली है, हमेशा रिश्तों में हर चीज मेरे अनुसार चले ये नहीं होने वाला है, लोग मेरी एक्सपेक्टेशन को हमेशा मीट करें ये नहीं होने वाला है, आप जैसा मैं सोचूं वैसा बिहेव करें ये नहीं होने वाला है। सो इफ माई हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। देन वी रियलाइज्ड के सिचुएशन तो बाहर से आती, थॉट हम करते, और अगर हम अपने आप को देखना शुरू करें और अपने आप को चेंज करना शुरू करें, हो सकता है हम उसी परिस्थिति में थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील कर सकते। पहली बात तो हैप्पीनेस क्या है, you know, that also is a question mark. We really don't know what we are talking about. क्या हम excitement की बात कर रहे हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा कुछ उमंग उत्साह उस तरह की बात कर रहे हैं। Happiness doesn't mean always that you are jumping up and down like, that's not happiness. कहीं कुछ बात हो गई है, घर में कोई हादसा हो गया है, किसी कोई illness है, somebody has left the body. So there is not question, आप बोलोगे इस टाइम हाउ कैन आई बी हैप्पी, येस दिस टाइम आई कैन नॉट बी हैप्पी, बट कैन आई बी स्टेबल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इज इट दैट पेन एंड सोरो ये नेचुरल ही है, ये क्रिएट करना है, क्योंकि जितना हम स्टेबल रह सकेंगे उतना हम उस सिचुएशन को अच्छी तरह से क्रॉस कर सकेंगे, और स्टेबल रहने के लिए मुझे उस सिचुएशन में राइट काइंड ऑफ थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने देखा जो थॉट हम क्रिएट करेंगे उस क्वालिटी की फिर हमें फीलिंग्स जेनरेट होंगी, वो फिर हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा, फिर हमारी पर्सनैलिटी बनती जाएगी, एंड देन माई डेस्टिनी। और थॉट्स पर इन्फ्लुएंस किसका होता, क्योंकि आज ये समझ में तो आ गया कि थॉट्स सब कुछ काम कर रहा है बहुत बड़ा, लेकिन थॉट्स को चेंज कैसे करूं, ये तो आदत ही पड़ गई है मुझे नेगेटिव सोचने की। तब वी सॉ लास्ट टाइम कि थॉट्स पर जो चीज़ों का इफेक्ट होता, वन इज इंफॉर्मेशन, वन इज पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड थर्ड इज बिलीफ सिस्टम। हमारी जीवन में हम किन मान्यताओं के साथ, बिलीफ्स के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, एंड आई फील पर्सनली कि ये तीनों में से, इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम में, बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल रोल प्ले

0: करता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ठीक है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो क्या फीड करना क्या नहीं फीड करना. पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमने देखा कि हम बैठ कर उसके ऊपर वर्क करें तो वी कैन क्लीन इट ऑफ. लेकिन बिलीफ सिस्टम इज समथिंग दैट बचपन से शुरू होते होते एज आई वॉज ग्रोइंग मेरे अंदर बहुत गहरे डीप रूटेड है, एंड समटाइम्स आई डोंट इवन रियलाइज कि मेरे कौन से बिलीव सिस्टम्स हैं.
1: बिलीव सिस्टम इन द सेंस कि बिलीव सिस्टम बने कैसे, पूरा एनवायरनमेंट था मेरा क्या ऐसा है चीज़
0: बिलीव सिस्टम बनाती है. बिलीव सिस्टम बनने के लिए भी इट कुड बी एनवायरनमेंट, इट कुड बी जो हमें सिखाया गया यू नो बचपन से. लेट्स से कि एज अ चाइल्ड मैंने ये देखा कि जब भी मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे डांटा गया है ना, या जब भी मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मेरे पेरेंट्स के अनुसार राइट नहीं था तो मुझे डांटा गया. अब ये इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मैंने देखी कि दिस इज द वे, तो मेरा क्या बिलीव सिस्टम बना कि जब भी कोई कुछ ऐसा करे
1: जो आपको पसंद ना हो,
0: जो आपको राइट ना लगे, तो उसको चेंज करने का तरीका उसको डांटो. तो ये मैंने सीखा ना, इट्स नॉट दैट किसी ने मुझे सिखाया बैठकर, लेकिन मैंने वो सिनारियो से, मैंने सबको अपने आसपास वो करते हुए मैंने वो बिलीफ सिस्टम बनाया, दिस इज द वे इट वर्क्स. तो ये हम बिलीफ सिस्टम्स बनाते गए. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम औरों पर ब्लेम कर दें कि जो भी बिलीफ सिस्टम के लिए, हमें फिर अपने जीवन में आज स्टॉप करके चेक करके देखना पड़ेगा कि वो बिलीफ सिस्टम क्या रिजल्ट क्रिएट करता है. यू नो हर एक बिलीफ, यू नो इट्स लाइक अ कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर बहुत पावरफुल एक सिस्टम है जो हमारे पास है, तो एक कंप्यूटर को चलाने वाला जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम. उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी के पास विंडोज है तो किसी के पास मैक है तो कुछ भी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि सारे प्रोग्राम्स जो उस पर चलेंगे
1: वो कैसे चलेंगे.
0: तो ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना,
1: दिस
0: इज लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये इसको टाइम टू टाइम थोड़ा सा,
1: इसको तो बहुत सारी चीज, अब जैसे यही एक बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि दर्द के साथ रहना तो नेचुरल है.
0: क्या एब्सोल्युटली ये एक नेचुरल है. आज टेंशन होना तो नेचुरल है. हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं,
1: कभी खुशी कभी गम, यस
0: ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है. विच इज ओके, नो वन इज टू चैलेंज माई बिलीफ सिस्टम, आई हैव टू चैलेंज इट माई सेल्फ. मुझे खुद अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ है एक मान्यता है.
1: लेकिन बिलीफ जो है वो एक्सपीरियंस भी तो बन रहा होगा ना.
0: यस yes.
1: तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, मेरा अनुभव ये कह रहा है, और उसको मैंने बिलीव, जैसे बचपन में भी मैं देखती आई जो, तो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव होते गए, अनुभवों को मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया.
0: तो अब सपोज मैंने बचपन में ये सीखा कि जब भी कोई गलती करे तो उसको गुस्सा करो, ठीक है, तो मैंने भी ये पकड़ लिया. या मैंने ये सीखा कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे गुस्सा करते हैं ना तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, जब नहीं गुस्सा करते ना
1: तब
0: मैं नहीं पढ़ती, तो मेरा अपना मस्ती चलती रहती है. लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे डांटा तो मैंने पढ़ा, तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम बना कि किसी से अगर काम करवाना है तो काम करवाने का तरीका क्या है, उनको डांट दो ना वो काम कर देते हैं. नाउ आई टुक दिस बिलीफ सिस्टम एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद इट इन माई लाइफ. तो चाहे वो मेरे ऑफिस में है, चाहे वो मेरे घर पर है, आई एम वर्किंग विद दिस बिलीफ सिस्टम कि किसी से काम करवाना उनको डांट दो. काम भी हो रहा है, लेकिन क्या मेरी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर उसका इफेक्ट होता है? क्या मेरे रिश्तों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है? एक तरफ से आई एम सेइंग मुझे हैप्पीनेस चाहिए, हर एक कह रहा है मुझे खुशी चाहिए, दूसरी तरफ से मैंने बिलीफ सिस्टम बनाया कि गुस्से से काम होता है. हैप्पीनेस एंड एंगर, ये दोनों इकट्ठे कैसे रहेंगे? हाउ विल इट हैपन? आज मुझे रोज काम करना है, रोज लोगों से काम करवाना है, एंड रोज मैं इसी बिलीफ सिस्टम से काम कर रही हूँ कि गुस्से से काम होता है, गुस्से से काम. तो एनर्जी क्रिएट हो रही है अंदर गुस्से वाली, दिस एनर्जी गोज आउट एंड देन द सेम एनर्जी कम्स बैक. तो इतना गुस्सा क्रिएट कर के सारा दिन, देन व्हाई एम आई सेइंग कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए?
1: काम तो होता गया ना, तो मैं तभी उसको यूज करूंगी ना जब काम नहीं हो रहा होगा.
0: राइट, तो आप काम करवाने के लिए उसको यूज कर रहे हो ना, लेकिन हमने कभी स्टॉप करके लाइफ में ये चेक करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए जीवन में. ठीक है, सपोज हमने कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि गुस्से से काम होगा, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है. लेकिन मैं चाहती हूँ कि वंस आई वर्क विद दिस प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर मुझे रिजल्ट कुछ और चाहिए. अब रिजल्ट तो वो वाला नहीं आ रहा ना, रिजल्ट खुशी नहीं आ रही, गुस्सा बार बार करने के बाद खुशी रिजल्ट नहीं हो सकती. तो अगर वो रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन में अपनी जीवन को जीती हूँ कि इंस्ट्रक्शन कुछ और फीड करती जा रही हूँ और रिजल्ट कुछ और एक्सपेक्ट करते जा रहे हो, करूं गुस्सा, करूं चिंता और चाहिए खुशी, तो कहां से होगी? नाउ अब गुस्से से काम भी क्यों करवा रहे हैं, चाहिए तो खुशी, लेकिन दूसरा बिलीव सिस्टम ये बना हुआ है कि काम जितना होता जाएगा
1: खुशी
0: सफलता मिलती जाएगी, जितनी सफलता मिलेगी उतनी खुशी मिलेगी. नीड टू स्टॉप एंड चेक. These are belief systems.
1: तो ये तो पूरी जिंदगी मेरे belief system पे जुड़ी
0: है. सब कुछ तो belief system पे है. हर, that's why we said it's the operating system. जिस quality का operating system है, सब कुछ उस पर based है. सारा कुछ उस पर based होगा. सारा दिन में हमें पता भी नहीं चलता हम कितने सारे belief systems के साथ काम करते.
1: तो अभी तो हमें पूरा विंडोज खोलना पड़ेगा. वो it's a big process actually.
0: But the thing is के belief system and one is the truth. Is this the truth? एंगर इज नेचुरल. ये एक बिलीफ है या ये एक सत्यता है? ये मुझे अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. ये जो बिलीफ सिस्टम्स, अगर हम एक भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ चले, सी द क्रिटिकल पार्ट क्या है, बिलीफ से थॉट क्रिएट होगा, थॉट से डेस्टिनी क्रिएट हो रही है. अगर मेरा एक भी बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आएगा?
1: मेरी डेस्टिनी पर.
0: डेस्टिनी पर आएगा. एंड दैट्स व्हाई स्टॉपिंग एंड चेकिंग माय बिलीफ सिस्टम सारा दिन में. अगर आपके साथ कुछ भी बाहर, आप जो एनर्जी डाल रहे हैं, आपके साथ जो हो रहा है, कहीं आपको अंदर डिस्टर्बेंस फील हो रही है, जस्ट हैव टू स्टॉप एंड चेक मेरा कौन सा बिलीफ सिस्टम इसमें काम कर रहा है. एंड आपको अपना बिलीफ सिस्टम उसी टाइम दिखाई दे देगा. इमीजिएटली आपको सिर्फ वो इक्वेशन बनाकर रखनी है अपनी लाइफ में. बिलीफ इज इक्वल टू थॉट इज इक्वल टू डेस्टिनी. बीच का भी बहुत ज्यादा नहीं छोड़ो उसको. दैट तो वो ऑटोमेटिकली इट्स वर्किंग. जैसे ही आपके अंदर कोई थॉट क्रिएट हुई, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम दोनों बैठे हैं, अभी चार लोग आते हैं सामने, एंड वो चार लोग मेरे से नहीं बात करते, वो चार लोग ज्यादा आपके साथ ही बात करने लग जाते हैं. यू नो दे प्रेजिंग यू एंड दे अप्रिशिएटिंग यू एंड आई एम नॉट फीलिंग नाइस. मुझे अच्छा नहीं लग रहा. ठीक है ना, मुझे अगर फीलिंग के लेवल पर दिखाई देता, देन आई विल गो बैकवर्ड्स. आई विल से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कौन सी वाली थॉट क्रिएट हो रही है इसके पीछे, क्या थॉट क्रिएट हो रही है? तो थॉट ये क्रिएट हो रही है, इज शी बेटर देन मी, इज इट दैट पीपल लाइक हर मोर, दिस काइंड ऑफ थॉट्स आई एम क्रिएटिंग, और ये थॉट इज मेकिंग मी फील लो. अब इसके पीछे मुझे बिलीफ सिस्टम अपना चेक करना पड़ेगा, कौन से बिलीफ की वजह से मैंने ये थॉट क्रिएट की. मेरा बिलीफ वो था कि जितना लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे उतना आई एम अ बेटर पर्सन.
1: ओ गॉड,
0: माय बीइंग गुड, वर्दी, नाइस, व्हाटएवर लेबल हमें लेना है.
1: आई थिंक यू सॉल्व्ड सच अ बिग प्रॉब्लम.
0: इट इज बेस्ड ऑन लोगों का अप्रिसिएशन, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं इवैल्यूएट कर सकती. तो वो बिलीफ सिस्टम ने क्या किया, तुरंत जैसे ही मैंने वो चार लोगों को आपको अप्रिशिएट करते हुए देखा, मैंने, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इमीडिएटली द थॉट इज देन आई एम नॉट अ गुड पर्सन, शी इज अ बेटर पर्सन, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, पीपल डोंट लाइक मी. अभी उसके बाद फीलिंग कौन सी क्रिएट होगी,
1: और उसके साथ साथ और इसके साथ जुड़ी हुई और बाकी और गंदी गंदी फीलिंग्स भी आ सकती है. यू नो ये एक्चुअली जेलेसी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर.
0: यस, द जेलेसी किस बेसिस पर स्टार्ट हुई?
1: तो इट हैज नथिंग टू डू विद मी एंड यू.
0: इट हैज नथिंग.
1: इट हैज एक्चुअली टू डू विद अ बिलीफ सिस्टम व्हिच एक्चुअली अगर मेरे सामने आए तो मुझे कहेगा कि लोगों से क्या फर्क पड़ता है.
0: एब्सोल्युटली.
1: लेकिन वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं मैंने फिट किया.
0: हाँ, तो अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, अगर हम उसको बिलीफ सिस्टम के लेवल पर चेक कर लेंगे कि कौन सा बिलीफ मेरा वर्क हुआ, क्योंकि यहाँ पर यही बिलीफ वर्क हुआ कि जितना लोग जिसको अप्रिशिएट करते वो ज्यादा अच्छा है. एंड हाँ. जहाँ ये लोग मेरे पास बात करने नहीं आए, मतलब आई एम नॉट गुड. नाउ दिस बिलीफ सिस्टम कैन बी वेरी वेरी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी. और ये डिस्टर्बेंस के कारण मैं जेलस फील करूंगी, फिर मैं अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए लोगों के सामने मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगी. इट्स नथिंग टू डू विद यू एक्चुअली. आप बहुत जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन मुझे अपने आप को फील करवाना ना. अब इससे रिस्क ये होगा कि भले आपके सामने नहीं, लेकिन अपने आप को अच्छा फील करने के लिए मैं आपकी बुराइयां देखना शुरू कर दूंगी कि क्या है इसमें, क्या अच्छा लगता है, इनको क्या पता ये एक्चुअली कैसी है, इनको कुछ मालूम, यू नो. एंड माय इंटेलेक्ट, माय माइंड विल स्टार्ट गोइंग एंड लुकिंग एट
1: एंड यू नो हियर दिस डेस्टिनी इज क्रिएटेड बिकॉज आपकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी. यू नो आप दूर होते जाते हैं ऐसे ही.
0: अब जब मैं ये एनर्जी क्रिएट करूंगी तब एक्चुअली लोग मेरे से परे हटेंगे. एक्चुअली हटेंगे क्योंकि मैंने कौन सी एनर्जी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी, नेगेटिविटी की, जेलेसी की. फिर हो सकता है जब मुझे चांस मिले मैं उन्हीं चार लोगों के पास जाकर इनडायरेक्टली थोड़ी सी आपके बारे में बुराई करना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं बहुत अच्छी हूं. तो मैं उनको बोल दूंगी आपको क्या पता है कानुप्रिया के बारे में, इनडायरेक्टली, ताकि नेक्स्ट टाइम दे विल कम टू मी बिकॉज एंड नाउ आई एम एक्चुअली टेकिंग देम अवे फ्रॉम मी ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन बिलीफ सिस्टम. अब अगर उसी सीन में मैं अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करूं, आई एम हु आई एम, आई नो हु आई एम, आई एम नॉट परफेक्ट, I know that very well, कि मेरे अंदर अपनी कमजोरियां हैं, अपनी शक्तियां हैं, लेकिन उन पर मुझे ही काम करना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या किस बेसिस पर मेरे पास आते हैं, that doesn't matter. ये जर्नी मेरी अपनी है. तो मेरा आपके साथ जो कंपैरिजन करने की यात्रा होगी, that will stop. Who I am is based on how I know myself, not based on how people appreciate me or say to me. Yes, ये natural है कि अगर आप एक अच्छी energy create करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, लेकिन वो benchmark नहीं है. लोगों का आपके पास आना, लोगों का आपके साथ अच्छी तरह से बात करना, इसके पीछे बहुत सारे factors हो सकते हैं. It is definitely not necessary. आज के समय में we can see it. It is possible कि I don't like you और फिर भी मैं आपके पास आऊँ, आपके बारे में बहुत अच्छा बोलूँ. एंड अगर आप उस बेसिस पर अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे तो वो तो बहुत रिस्की है. मुझे अपने आप को खुद इवैल्यूएट करना आना चाहिए. बट फॉर दैट आई विल हैव टू चेंज माय बिलीफ सिस्टम कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है और मुझे अपने उस पर काम करना है, अपनी कमजोरियों पर. लोग क्या कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हैं. हाँ, लोग जो कहते हैं आई कैन टेक दैट एज अ फीडबैक, बट जस्ट टेक इट एज अ फीडबैक एंड वर्क विद मायसेल्फ. तो एक एक बिलीफ सिस्टम मेरे थॉट पर एंड फिर मेरी डेस्टिनी पर काम करता है. और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं इसमें मेरा क्या है, ये तो इनकी वजह से हुआ. It is totally
1: of course, because of you know, and what happens? And suddenly I realize that this is where the friendship starts, you know, soaring up.
0: वो तो destiny for the बिल्कुल. And it's not only about friendship. मैं कितने दर्द से गुजरने वाली हूँ अंदर. मेरे अंदर वे जो inferiority complex हमारे अंदर आ जाता है. क्यों आ जाता है? हम अपने आप को किसी के साथ compare करते हैं. ये भी तो एक belief system है. कॉम्पिटिशन
1: कि अगर मैं मुझे अच्छा होने के लिए या मुझे जीतने के लिए किसी को तो हारना ही है. जिंदगी एक हार जीत है.
0: जिंदगी एक हार जीत है. बताओ ये बिलीफ सिस्टम हमारा बना है.
1: जिंदगी इज लाइफ इज अ वॉर,
0: लाइफ इज अ गेम.
1: यस,
0: लाइफ अगर गेम बोलेंगे, लाइफ इज अ गेम, तो इट ऑलवेज बी के दे विल बी अ विनर एंड दे विल ऑलवेज बी अ लूजर. अब अगर मैं इस बिलीफ सिस्टम के साथ चलूं कि इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ गेम, इट्स अ वॉर, तो मैं सारा दिन क्या करूंगी औरों के साथ?
1: खेल खेलती रहूंगी ना, गेम खेलती रहूंगी.
0: यस, एंड सारा
1: दिन गेम खेलने में मैं जीत हार को देखती रहूंगी, कौन जीता कौन हारा.
0: एब्सोल्युटली. और जैसे ही अगर मुझे कहीं दिखाई दिया कि आप जीत रहे हैं, तो मैंने कुछ भी कर देना है आपसे आगे निकलने के लिए, चाहे वो ऑफिस में इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे आपको क्रिटिसाइज करके आपको नीचे गिराना है. मतलब आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि लाइफ इज अबाउट मी गोइंग अहेड ऑफ यू. दिस इज अ बिलीफ सिस्टम. तो एक बिलीफ सिस्टम मेरे पूरे अंदर की सोच को, मेरी फीलिंग को सारा चेंज कर सकता है. एक बार तो रुक कर देखें, वेयर इज द कंपटीशन?
1: अच्छा, किस बात का कंपटीशन? नो कि मेरा जो ये थॉट क्रिएट हुआ है वो किस बिलीफ सिस्टम पे है?
0: स्टॉप करके देखना पड़ेगा. हाँ. क्या इसके पीछे मेरे अंदर, दिस हैपेंस स्लोली, ऑब्वियसली वो एकदम से पहले दिन पर नहीं होगा, लेकिन कई बार जब भी आपके बिलीफ्स आपको ध्यान में आए, यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन, क्योंकि इतने सारे बिलीफ्स हैं. हमारे इतने सारे बिलीफ्स हैं कि सपोज मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए मुझे. ये मेरा बिलीफ सिस्टम है. अगर आपने नहीं अप्रिशिएट किया तो मुझे बुरा. क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, जब मैंने किसी के लिए कुछ किया तो अप्रिसिएशन तो मिलनी ही चाहिए. प्रेज तो मिलना ही. इट्स सो नेचुरल.
1: सी, इट इज नेचुरल. मतलब अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो यू शुड एटलीस्ट अप्रिशिएट.
0: जैसे जैसे हम अवेयर होते जाते हैं, हमें इमीडिएटली पता चल जाता है नहीं, मैंने किया क्योंकि मैं करना चाहती थी. या बिलीफ सिस्टम, अगर मैंने आपके लिए अच्छा किया तो आप भी तो रिटर्न में अच्छा ही करोगे. बिलीफ सिस्टम है
1: तो वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा करेगा.
0: क्या जरूरी है आज के वो अच्छा करेगा?
1: वो किस थॉट प्रोसेस में, और अच्छा और, अच्छा क्या
0: और
1: होता है? क्या
0: अच्छा और बुरा तो मेरे रेफरेंस पॉइंट से है ना, अच्छा और बुरा आपके रेफरेंस पॉइंट से तो है ही नहीं, आप अपने अनुसार तो हमेशा अच्छा ही कर रहे हो वैसे भी, लेकिन मेरा बेंचमार्क वो
1: ये बना रखा है मैंने. ओह यस, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आपने मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आती हूँ, मैं आप जब बीमार हो जाते हो मैं आपकी इतनी केयर करती हूँ, मैं बीमार होकर पूछा तक नहीं आप
0: ना से. फिर थॉट कौन से क्रिएट हुई, फीलिंग कौन से क्रिएट हुई, अगली बार मैं नहीं करूंगी आपके लिए. डेस्टिनी, दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग. नेक्स्ट वी चेंज आवर बिलीफ सिस्टम एंड वी से मैं वो करूंगी जो करते हुए
1: मुझे अच्छा
0: लगता है, नॉट मैं वो करूंगी ताकि इन रिटर्न आप करेंगे, क्योंकि उस बिलीफ सिस्टम से मुझे क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला,
1: हर पेन, यस रिजेक्शन पेन अननेसेसरीली, यू नो, एंड देन वी स्टार्ट प्रेशराइजिंग द अदर पर्सन आल्सो.
0: एब्सोल्युटली,
1: यू नो, वी स्टार्ट एक्सपेक्ट, यही एक्सपेक्टेशंस आने लगती हैं फिर.
0: मैंने आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया, या मैंने आपके लिए इतना पूरी जीवन मैंने आपके लिए ही किया, आपने क्या किया. तो ये बिलीफ सिस्टम्स की चेकिंग क्यों जरूरी है, बिलीफ सिस्टम्स को धीरे धीरे चेंज करते जाएं और वो वाले बिलीफ सिस्टम्स एस्टैब्लिश करें जो हमारे जीवन को स्मूथ, इजी एंड हैप्पीनेस हम क्रिएट कर सकते हैं. इफ आई कैन चेंज माय बिलीफ सिस्टम एंड आई कैन से आई विल डू व्हाट आई वांट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, इज इट पॉसिबल टू लीड?
1: सेइंग इट इज इजी,
0: दैट्स एक बार से, हां तो डूइंग विल कम विद प्रैक्टिस ना, ठीक है ना, एक बार भी नहीं होगा. पेन
1: अगेन, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि बार-बार हम जो बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, अगर मैंने कुछ किया हुआ है किसी के लिए और वो वापस, या मेरी जब सिचुएशन आई तो उसने वैसे नहीं रिएक्ट किया या नहीं किया, तो वो जो पेन है उसमें मैं उस वक्त तो हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकती,
0: नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो प्रोग्रामिंग अपनी कर ली थी कि मैंने आपके लिए किया
1: तो मुझे आपको करना ही,
0: आपको करना ही है. यू सी, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि जिसके लिए मैं अच्छा करूंगी उसको मेरे लिए अच्छा करना ही है. जैसे ही वो अगर नहीं करते हैं या वो उस तरह से नहीं कर, सी एवरीवन इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी. हो सकता है आपकी नेचर है कि आप बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब आप डिनर होस्ट करेंगे तो आप इतना कुछ कर देंगे, आप गिफ्ट्स देंगे तो इतने देंगे, आप मेरे लिए कुछ भी कर रहे हैं. हो सकता है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी. मेरे लिए आप घर पर आओगे तो मैं पूछूंगी आप चाय पियोगे क्या, यू विल से लाइक आप मेरे घर आए थे तो मैंने तो पूरा डिनर आपके लिए बनाया था और आप मुझे पूछ रहे हैं चाय पियोगे कि नहीं पियोगे. यू आर हर्ट, you don't feel anything
1: of
0: for me.
1: Of course, I'm hurt. You're not, I'm badly hurt. You know, we get hurt.
0: Yeah. Now, this is, we are talking on physical things. And yehi same cheez,
1: subtle,
0: emotional level par bhi work hoti. Ki jitna main aapke liye kar rahi hoon, mera ye belief hota hai, aap bhi usi proportion mein mere liye karenge. Ye bahut deep belief system hai. Aur yahan kahin na kahin fir hum,
1: और ये हम justified, see, we say that this is right, it should be like this, yes. But then we have to check कि वो मुझे pain दे रहा है, it means it's not right.
0: That's because, yeah, that belief system is definitely not right. क्योंकि हर एक का personality different है, हर एक का सोचना, हर एक का करना, it's not that they're wrong, वो bad है, लेकिन उनका right and wrong different है. आप जितना करते हो, मेरी capacity नहीं है, मैं उतना नहीं कर पाती, लेकिन क्योंकि आपने ये बिलीफ बनाया था कि मैं उतनी ही कैपेसिटी में करूंगी, आप हर्ट हुए जब मैं नहीं करती. अब आप अपने बिलीफ को अगर थोड़ा सा चेंज करो कि मैं आपके लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये करते हुए मुझे अच्छा लगता है, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी एक्सपेक्टिंग टू मच इन रिटर्न. यहाँ तक के लाइक वंस आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग फॉर समवन, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे रिटर्न में, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई जस्ट लाइक डूइंग इट, तो मैं कर रही हूँ. लेकिन होता ऐसे कई बार कि वो अच्छा तो कुछ नहीं किया रिटर्न में, लेकिन किसी ने हो सकता है कि एकदम
1: धोखा दे दिया,
0: कुछ गलत कर दिया, कुछ बहुत, एंड आई फेल्ट हर्ट, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा, एंड देन आई थॉट अबाउट इट, आई सेड ये भी तो एक्सपेक्टेशन है, ये भी एक्सपेक्ट, हम ये सोच रहे थे, मैं वेरी डीप बिलीफ सिस्टम, मैं ये सोच रही थी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, मेरे को करने दो, मुझे करते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने बुरा कर दिया, तो दैट ऑल्सो यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशन,
1: एटलीस्ट आप कुछ मत करते.
0: सो मैंने वो बिलीफ बनाया था कि मैं अच्छा करूंगी, आप कुछ मत करना, लेकिन आपने जो मैंने सोचा, लेकिन आपने तो कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरे ऊपर कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ गया, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेशन था. तो इफ आई कैन चेंज माय बिलीफ सिस्टम टू मैं वो करूंगी जो मुझे ठीक लगता है,
1: विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और विदाउट एनी थिंग्स,
0: यू नो हाउ सिंपल माय लाइफ विल बिकम.
1: Oh yes, but right now too I am realizing how much we need to do, in the sense that how much we need to understand, you know, it's a major shift ki one रियलाइजिंग कि जहां मुझे बुरा लगने शुरू हो उस समय हमें रुक जाना चाहिए. एक्चुअली वी शुड नॉट ट्राई टू मूव अहेड, वी शुड लुक एट कि कौन सा बिलीव सिस्टम है जिसने मेरा ये थॉट क्रिएट किया. अगर आपके पास कोई मन में सवाल उठता है, कोई बात अभी लग रहा है कि इससे जुड़ी हुई है, तो आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत मेजर नया बिलीफ सिस्टम हमने किया है कि जितने भी जो भी नेगेटिविटी मुझे होती है उसके पीछे कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम है जिसे चेंज किया जा सकता है. वो चेंज कैसे होगा वो हम अगली कड़ी में जानेंगे, लेकिन अभी सिस्टर शिवानी आज एक बहुत मेजर हमें अगेन हम कहेंगे एक चाबी है, एक कुंजी है, एक की है टू एक्चुअली सॉल्व द यू नो इट्स की टू हैप्पीनेस बेसिकली. सो लेट्स रिफ्लेक्ट फॉर सम टाइम एंड सी हाउ इट वर्क्स विद अस.
0: कंफर्टेबल होकर बैठे वी नॉट डूइंग एनीथिंग अननेचुरल, अपने आप को ही देखने की कोशिश करते हैं. बहुत सारी मान्यताओं के आधार पर जीवन चलता आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में अपने अनुभवों को देखते, अगर वो अनुभव वो फीलिंग्स कंफर्टेबल नहीं लगती तो अपनी मान्यताओं को चेक करो. वो बिलीफ्स जो हम समझते थे कि यही सत्य है, लेकिन ट्रुथ is always comfortable. Truth will always make me feel peaceful. Somewhere there is a confusion. Happiness is natural. Happiness is unconditional. Happiness is my creation. Meri khushi मेरी अपनी रचना है, ये किसी पर भी आधारित नहीं है, ये मेरे हाथ में है. आज इस बिलीफ को लेते और सारा दिन की यात्रा पर चलते हैं और चेक करते क्या अनुभव होता है. ओम शांति.
1: ओम शांति. जिस तरह से साइलेंस में बैठकर हमने अपने सबकॉन्शियस को, आपने पहले भी कहा था कुछ कुछ बीज बोने की ज़रूरत है, सो आज साइलेंस में बैठकर अपने साथ इस एक बिलीफ सिस्टम को डालने की कोशिश की है और ये प्रयास संभव रहेगा कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी अपनी वैल्यू है एंड आई कैन बी हैप्पी एनी टाइम आई वॉन्ट. इसी के साथ हम आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि इस श्रृंखला में जो जो हम सीख रहे हैं उसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे. ओम शांति.

0: विद्यार्थी काल की बात है। विनोबा को बचपन से ही पढ़ने की धुन थी। उनका बचपन बड़ौदा में ही बीता। बड़ौदा के राजा स्वर्गीय सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्थापित भारत की अच्छी एवं प्रसिद्ध सेंट्रल लाइब्रेरी को विनोबा जैसा पाठक मिल गया। उस पुस्तकालय का सबसे अधिक उपयोग करने वालों में शायद विनोबा अग्रणी होंगे। एक दिन पुस्तकालय के व्यवस्थापक ने विनोबा से पूछा था कि यदि एक के बदले आपको तीन किताबें पढ़ डालते, यही है ना? कभी पूछते कि यहाँ की एक भी किताब ऐसी है जो आपकी नजर से न गुजरी हो? उसी पुस्तकालय का एक प्रसंग।
1: 40 साल पहले मैं बड़ौदा कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज की छुट्टी के दिनों में भारत की सबसे बड़ी बड़ौदा की सेंट्रल लाइब्रेरी में रोज दोपहर को मैं खा पी कर जा बैठता। 2-3 घंटे सहज ही निकल जाते थे। गर्मी के दिन रहते थे इसलिए मैं कमीज निकाल कर खुले बदन बैठता था। एक दिन वहाँ काम करने वाले एक भाई मेरे पास आए और बोले,
2: आपका ड्रेस डिसेंट ड्रेस नहीं है, पोशाक कैसी पहननी चाहिए यह समझना चाहिए।
1: भगवान ने मुझे जो समझ शक्ति दी है उसके मुताबिक ही मैं कपड़े पहनता हूँ।
0: जवाब देकर विनोबा पढ़ने में मगन हो गए। पुस्तकालय के प्रबंधक गोरे साहब जो तीसरी मंजिल पर बैठते थे उनके पास शिकायत पहुंची कि नीचे एक विद्यार्थी खुले बदन पढ़ने बैठता है और कहने पर भी किसी की सुनता नहीं है। विनोबा को तुरंत ऊपर बुलाया गया। गोरे साहब शर्ट पतलून पहने थे, कोट निकालकर दीवार पर लटका दिया था, हैट टेबल पर पड़ा था, सिर पर पंखा घूम रहा था। उनका मिजाज उन दिनों अंग्रेजों का जैसा साधारणतः रहता था वैसा ही था। उनके सामने विनोबा जी को खड़ा कर दिया गया। उन्होंने विनोबा के खुले बदन की ओर निर्देश करते हुए पूछा,
3: क्यों अच्छी सभ्यता आती नहीं है?
1: जी मैं तो अपने देश की सभ्यता जानता हूँ।
3: क्या है तुम्हारे देश की सभ्यता?
1: जो मनुष्य खुद कुर्सी पर बैठे और दूसरे को खड़ा रखे उसे हमारे देश में असभ्य मानते हैं। और हमारे देश में और एक सभ्यता यह है कि जब बहुत गर्मी होती है तब बदन खुला रखना चाहिए।
0: शिवाजी जयंती का दिन, विनोबा ने अपने मित्रों से कहा कि आज हम शिवाजी जयंती मनाएंगे।
4: कैसे, कहाँ चलकर मनाएंगे?
1: चलो हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, मुक्त आकाश के नीचे जंगल के स्वतंत्र वातावरण में शिवाजी की जयंती मनाएंगे। स्वातंत्र प्रेमी शिवाजी की जयंती किसी घर के कोने में ड्राइंग रूम में थोड़ी मनाई जाएगी।
0: जयंती मनाना तो तय हुआ, परंतु उस दिन स्कूल में छुट्टी नहीं थी। सबने मिलकर तय किया कि उस दिन इतिहास का घंटा छोड़ देंगे। वहां घंटा छोड़कर सब गए जंगल में, खूब श्रद्धा से जयंती मनाई, परंतु वापस लौटते समय चर्चा की, घंटा छोड़ा है उसकी जो सजा होगी उसका क्या?
1: हम सबको 4-4 आना साथ में रखना चाहिए। मास्टर साहब यदि नाराज हो जाएं तो 4-4 आना दंड का दे देना है।
0: सबको ये विचार जज गया। दूसरे दिन सब 4-4 आने लेकर स्कूल पहुंचे। इतिहास का घंटा शुरू हुआ।
5: कल तुम लोग कहाँ गए थे?
6: सर, शिव जयंती मनाने जंगल में गए थे।
5: क्या शिवाजी जयंती स्कूल में नहीं मनाई जा सकती थी?
1: गुलाम खाने में कहीं शिवाजी जयंती मनाई जाती है क्या?
5: तुम सब बदमाश हो, तुम सब पर जुर्माना करूंगा मैं।
6: ये है आपका जुर्माना, हम लेकर ही आए हैं।
0: सबने 4-4 आने जुर्माने के तौर पर भर दिए। मास्टर साहब बेचारे ठंडे पड़ गए। विनोबा दूसरे गंभीर विषयों का अध्ययन करने या घूमने के लिए रोल कॉल हाजिरी के बाद निकल जाते। रोज 15 मील का चक्कर तो सहज हो जाता था। वे कहते हैं कि
1: बचपन में यदि घूमने की तालीम मुझे न मिली होती तो भूदान यज्ञ की इतनी पद यात्रा मैं नहीं कर सकता था।
0: एक बार विनायक को शाला की ओर से पुरस्कार मिला। उनसे पूछा गया कि इनाम में कौन सी किताब चाहिए।
1: मुझे तो दास बोध चाहिए।
5: इस उम्र में क्या सन्यासी बनना है?
0: विनायक को जब दूसरा 15 रुपए का इनाम मिला तो वो अन्य किताबों के साथ एकनाथी भागवत भी खरीद लाए। विनू का एक मित्र वो किताब पढ़ने के लिए घर लेकर गया। उस मित्र के पिता धार्मिक वृत्ति के थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनका लड़का इस उम्र में एकनाथी भागवत पढ़ रहा है तो उन्होंने उसको डांटा, ये क्या भागवत पढ़ने की उम्र है? अपना अभ्यास छोड़कर क्या फालतू धंधा करता है? विनू को जब पता चला तो विनायक ने कहा,
1: धार्मिक कहे जाने वाले बाप के ये विचार हैं, तब फिर आर्थिक बाप का क्या होगा प्रभु जाने।
0: धर्म और व्यवहार के बीच जो खाई है उसको पाटने का काम संत जन करते आए हैं। धर्म और अध्यात्म मंदिर मस्जिद में और गीता पाठ तथा माला फेरने में रहे, और व्यवहार में असत्य अनीति आदि सब कुछ चले, इस तरह दो अलग अलग विभाग संतों को कभी मंजूर नहीं होते। धर्म कोई फालतू धंधा नहीं है, वही जीवन है, वही जीवन का अधिष्ठान है। इंटर की परीक्षा के दिन नजदीक थे, विनायक की तैयारियां भी हो चुकी थी, फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं था, परंतु विचार चक्र कुछ दूसरी धुरी पर घूमने लगा था। एक दिन माँ रसोई बना रही थी और विनया आकर चूल्हे के पास बैठा। उसके हाथों में कुछ कागज थे, एकाएक कागज गोल गोल करके चूल्हे में झोंकने लगा। तब माँ ने पूछा,
7: विनया यह क्या जला रहा है?
1: मैंने कहा, मैट्रिक आदि परीक्षाओं के सर्टिफिकेट जला रहा हूँ माँ।
7: क्यों रे?
1: मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है।
7: अरे भले आदमी, आज जरूरत नहीं है तो भी पड़े रहने से तेरा क्या बिगड़ेगा?
0: माँ ने विनायक के भविष्य की चिंता में कहा, परंतु विनोबा की नीति मूले कुठाराघात की थी। वे कहते हैं कि
1: मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, कुछ काम धीरे धीरे करने के होते हैं, परंतु कुछ काम धीरे धीरे करने के नहीं होते हैं। उनमें तो एकदम रस्सी काटनी होती है, एकदम निर्णय लेना होता है। जैसे सिंहगढ़ की लड़ाई में तानाजी के सेनापतित्व में सब मराठे सैनिक वीरतापूर्वक लड़े, परंतु जैसे ही तानाजी मरा वैसे ही सब हिम्मत हार गए और भागने की चेष्टा करने लगे। तब तानाजी के भाई सूर्या जी ने सबको कहा, कहाँ भागते हो? किले से नीचे कूदने की रस्सी मैंने पहले ही काट दी है। और फिर इस पार या उस पार सोच करके सब सैनिक लड़े और सिंहगढ़ के स्वामी बने।
0: सन 1916 की बात है, 25 मार्च का दिन इंटर की परीक्षा देने के लिए मंडली बंबई की ओर रवाना हुई। विचार चक्र तो चालू ही था, निर्णय नहीं हो पा रहा था।
1: ये छोटी मोटी कागजी परीक्षाएं देकर जीवन का क्या उद्धार होने वाला है? लक्ष्य तो है ब्रह्म प्राप्ति, उसी के साधन स्वरूप जो भी प्रवृत्ति हो उसी का जीवन में स्थान हो। तब फिर ये सब नाटक क्यों? ये बंबई जाना, परीक्षा देना, पास होना,
0: ये सब मंथन चल रहा था। गाड़ी बड़ौदा स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ रही थी। मियां गांव गया, भड़ोज गया, सूरत स्टेशन आया। सूरत से दो रास्ते फटते थे, एक जाता था बंबई की ओर, दूसरा जाता था भुसावल की ओर। विनायक ने अपने साथी भोला से पूछा,
1: भोला क्या विचार है, गृह त्याग कर काशी चले?
0: जब दोनों का गृह त्याग करने का निर्णय हुआ और काशी जाने पर सहमति हुई, उस वक्त रास्ते में से ही विनायक ने माता पिता को पत्र लिखा,
1: विन्या अब समाप्त हो गया, समझ लीजिए कि अब आपका पुत्र चल बसा है। आपको उतना विश्वास तो मुझ पर होगा ही कि मैं कहीं भी जाऊं मेरे हाथ से कोई अनैतिक काम नहीं होगा।
8: अरे यह तो मूर्ख है, पूछ कर जाता तो मैं थोड़े ही ना करने वाला था, परंतु मुझे आशा है विनय थोड़े ही दिनों में भटक कर वापस लौट आएगा।
7: नहीं, आप जैसा सोचते हैं वह नहीं होगा। मैं विनय को अच्छी तरह से जानती हूँ, विनय एक बार जो बोला उसमें फर्क नहीं पड़ेगा।
0: और माँ की वो बात सही निकली, विनोबा की निश्चय शक्ति बचपन से ही प्रबल थी। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए निश्चय शक्ति अनिवार्य है, ऐसा विनोबा मानते हैं। वे कहते हैं कि
1: 1912 में मुझे घर छोड़ने का विचार पहली बार आया, परंतु मैंने घर छोड़ा 1916 में। उतने समय में मैंने अपनी निश्चय शक्ति को कसौटी पर कसा, फिर जो निश्चय किया सो किया, उसमें पीछे मुड़कर नहीं देखा। निश्चय करने से पहले जितना सोचना हो सोच लेना चाहिए, संकल्प शुभ है इतनी प्रतीति हो गई तो फिर चिंता नहीं, क्योंकि शुभ संकल्प हो तो ईश्वर हमें अनुकूल है ही, फिर सारा जगत प्रतिकूल क्यों ना हो।
0: ऐसा दृढ़ निश्चय लाडला बेटा जब घर छोड़कर निकल गया, तब पड़ोस की बहनें इकट्ठी होकर माँ से कहती है, क्या करे आजकल के लड़के होते ही ऐसे हैं, माँ बाप की कोई परवाह नहीं, निकल पड़े घर छोड़कर।
7: खबरदार ऐसा कहा तो मेरा वीना कोई नाटक चेटक जैसी शूद्र वस्तु के लिए घर छोड़कर नहीं गया है। उसने तो अथेति ब्रह्म जिज्ञासा गृह त्याग किया है। देश और ईश्वर की सेवा के हेतु से वह गया है, उसका मुझे गौरव है।
0: अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। 1916 में विनोबा ने घर छोड़ा और काशी पहुंचे। उनका एक मित्र भोला भी उनके साथ था, काफी मजबूत और मन का जवान था। गंगा का पूरा पाट तैर कर जाता और वापस लौट आता, 3 फरलांग तो था ही। दैववशात विनोबा के उस एकमात्र साथी का अवसान काशी में ही हुआ, मानो वो शरीर छोड़ने के लिए ही काशी पहुंचा था। विनोबा उसकी मृत्यु की कहानी सुनाते हैं।
1: घर छोड़ने के बाद मेरा मित्र भोला मेरे साथ था, काशी में भी साथ था। नाम जैसा ही वह भोला था। गंगा किनारे जाता था और पंडे लोग रोकते थे, पूछते थे, तुम्हारे पिता का नाम क्या? यह नाना कहता रहता, परंतु पंडे पीछे पड़ते थे, कहते थे पैसे मत देना, तर्पण करा लो। और भोला ने विधि करा ली और फिर पैसा देने के लिए ना कहा तो भी उसके हाथ में 1 रुपया रख दिया। शाम को आकर मुझसे बताया तो मैंने कहा कि गलती हो गई। उसने भी स्वीकारा कि भूल हो गई।

0: विनायक, बेलगांव से कोई नारायण महाराज आए हैं, चलो मिलने चलेंगे।
1: भोला, संत पुरुषों से मिलने के पहले पूछताछ करनी चाहिए। तुम्हारे आग्रह पर मैं चल तो रहा हूं, पर हम दूर से ही खड़े रहकर सुनेंगे।
2: दोनों दूर खड़े होकर सुनने लगे। किसी ने सवाल पूछा, महाराज आप कहां से आए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, नारायण का निवास सर्वज्ञ है। ये सुनकर विनोबा ने भोला को खींचा। एक ही प्रश्नोत्तर से विनोबा की श्रद्धा गई।
0: अरे तुमने मुझे क्यों खींच लिया?
1: मैंने कहा, अरे तुमको यही सुनना था तो मैं तुमको कब का उपनिषद सुनाता? उन्हें सीधा जवाब देना चाहिए था।

0: परंतु दो ही महीने में एक कठिन प्रसंग उपस्थित हुआ। भोला बीमार हुआ और बीमारी एकदम गंभीर होती चली गई। लगा कि अब जाने के दिन नजदीक है। तब विनोबा ने पूछा,
1: मैंने पूछा घर पर खबर पहुंचानी है?
2: क्या जरूरत है? घर के साथ अब क्या संबंध? परलोक जाने पर कभी ना कभी तो खबर पहुंचेंगी ही।

0: मृत देह को अग्नि कौन लगाएगा? तुम्हारी क्या इच्छा है?
1: तुम ही लगा देना।
0: मैंने कहा, ठीक है।
2: वो मरेगा, इसमें तो उसको भी शक नहीं था, क्योंकि भोला को पेट का रोग था। दूसरे दिन भोला मर गया। विनोबा के लिए ये पहला प्रसंग था। कभी शमशान में जलाने के लिए गए नहीं थे। विनोबा के पास स्कूल की नौकरी के 4 रुपए बचे थे। उतने में चाहे जितनी शमशान यात्रा निकाल सकते थे, परंतु मुख्य तो लकड़ी का खर्च करना था। गंगा के किनारे पर मंत्रोच्चारण के साथ अंतिम विधि की। दूसरे दिन अन्न क्षेत्र की चर्चा चली कि इन लोगों ने भड़ाग्नि दी। इस पर विनोबा ने जवाब दिया,
0: अरे गंगा की महिमा अपार है, उनके किनारे भड़ाग्नि दिया तो कौवा भी स्वर्ग में चला जाएगा, भोला तो सीधा स्वर्ग में पहुंचेगा।
2: दलील करने में विनोबा पीछे रहने वालों में से नहीं थे। इस तरह उन्होंने भोला को विदाई दी।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की। वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में। कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में। कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हर्ट.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर, कीमती और साफ सुथरा आईना है. आप उसमें अपना चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि उस आईने के ऊपर किसी ने एक बहुत गाढ़ा और मटमैला पर्दा डाल रखा है. अब आईना चाहे जितना भी चमकदार हो, जब तक वह पर्दा उसके सामने से नहीं हटेगा, तब तक आप लाख कोशिश कर लें, आपको उसमें अपना अक्स दिखाई नहीं दे सकता. चेहरा देखने के लिए आईने को बदलने की नहीं, बल्कि उस पर्दे को हटाने की जरूरत है. हमारा यह जो दिल है, हमारा यह जो हृदय है, यह भी विधाता का बनाया हुआ एक ऐसा ही अनमोल आईना है. हम परमात्मा को, शांति को पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, जबकि वह इसी भीतरी आईने में बैठी हैं. अफसोस कि हमारे मन की दुविधाओं ने इस पर एक ऐसा मोटा पर्दा डाल दिया है कि हमें भीतर की सच्चाई दिखाई ही नहीं देती. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम जागृत सूत्र. हृदय भीतरी आरसी मुख देख्या नहीं जाई. हृदय भीतरी आरसी मुख देख्या नहीं जाई, मुख तो तब ही देखिए जे मन की दुविधा जाई.

टाइम। श्रोताओं, कबीर साहब अध्यात्म का एक अत्यंत गहरा नियम समझाते हुए कहते हैं, हृदय भीतरी आरसी। तुम्हारा यह जो हृदय यानी हृदय है, इसके भीतर यानी भीतर वह आरसी यानी परमात्मा के साक्षात्कार का असली दर्पण मौजूद है। तुम्हें सत्य के लिए बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख देखा नहीं जाए, लेकिन विडंबना यह है कि उस दर्पण के पास होने के बाद भी तुम्हें उसमें अपनी आत्मा का, उस परम सत्ता का मुख यानी स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। तुम अपनी ही असलियत से अनजान बैठे हो, तो वह मुख कब दिखाई देगा? अगली पंक्ति में कबीर इसका सीधा उपाय बताते हैं। मुख तो तब ही देखिए, उस चैतन्य सत्ता का असली चेहरा तो सिर्फ उसी एक क्षण में देखा जा सकता है जे मन की दुविधा जाए। जब तुम्हारे मन की दुविधा यानी तुम्हारे भीतर का सारा संशय, सारा द्वंद्व और यह करूं या वह करूं, संसार चुनूं या परमात्मा चुनूं का यह जो दो मुहापन है, वह पूरी तरह समाप्त हो जाए। जब मन पूरी तरह एकनिष्ठ और शांत हो जाता है, तभी वह दर्पण काम करता है। यह दोहा वेदांत के अद्वैत सिद्धांत और चित्त की एकाग्रता का महासूत्र है। दुविधा का दार्शनिक अर्थ है द्वैत, यानी खुद को परमात्मा से अलग मानना और संसार के नश्वर सुखों में और शाश्वत सत्य में लगातार डूलते रहना। जब तक मन में यह दुविधा है कि संसार ही मेरा असली घर है, तब तक बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि हृदय शुद्ध हैं, आत्मा जागृत हैं, बस मन की चंचलता और संशय का पर्दा बीच में अड़ा है। जैसे ही साधक सुमिरन और विवेक के बल पर इस दुविधा को, इस भीतरी भटकाव को विसर्जित कर देता है, वैसे ही बुद्धि का पर्दा हट जाता है और आत्मा अपने ही भीतर परमात्मा के परम प्रकाश का दर्शन कर लेती है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत होकर अपने मन के द्वंद्व को टटोलिए। हर रोज कितनी दुविधाओं में जीते हैं। एक तरफ हमारा मन भगवान की तरफ खींचता है और दूसरी तरफ हम संसार की ईर्ष्या, नफरत और लालच के जाल में भी फंसे रहना चाहते हैं। मुख में कुछ और, मन में कुछ और, यही वह दुविधा है जो हमारे भीतर आईने को धुंधला कर रही है। आज कोशिश कीजिए इस दुविधा के पर्दे को हटाने की, अपने इरादों में, अपनी प्रार्थना में और अपनी नियति में पूरी तरह साफ और एक निष्ठ बनिए। जब मन की यह दुविधा शांत होगी, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी हृदय रूपी आरसी में आपको उस राम नाम का, उस परमेश्वर का अनमोल चेहरा साफ साफ मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

खली गोसाल नियतिवाद का प्रवर्तक, उसका तत्वज्ञान तो एक तरह का देववाद। कहता है बनना बिगड़ना ये किसी के भी हाथ नहीं होता, घटना घटती ही रहती है। कोई भी दुख न नष्ट कर पाता है न बढ़ाता है। अजीत केश कंबल उच्छेदवादी था, विज्ञानवाद यह उनका तत्वज्ञान। उन्होंने कहा अर्थ नहीं है यज्ञ होम हवन में, तथा आत्मा को भी स्वर्ग नहीं है, नरक भी नहीं है। संसार की पीड़ाओं से आत्मा की मुक्ति नहीं है। 84 लाख योनि, जन्म मृत्यु का फेरा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पकुत कच्चायन अन्योन्यवाद का प्रवक्ता, कहता है शरीर पृथ्वी आप तेज वायु सुख दुख से बना है, और आत्मा सप्त महाभूतों से, वह स्वयंभू और शाश्वत होता है, विनाश नहीं होता उसका किसी से भी। संजय बेलपुत्ता विक्षेपवाद का प्रवर्तक, कहता है अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य को भोगना नहीं पड़ता, मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व ही नहीं होता। निगंठनाथ पुत्र चातुर्य मनसवरवाद का प्रवर्तक, इनका मानना है आत्मा का पुनर्जन्म होता है दुष्कर्म के कारण, दुष्कर्म टाला जाए इसलिए हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, साधन संपत्ति का संग्रह न करना। समकालीनों का तत्वज्ञान, तथागता तुझे कुछ संदर्भ में अपूर्ण और कुछ हद तक अज्ञान सा लगा। पूर्ण कश्यप और पकुद कच्चायन सामाजिक जवाबदारी से दूर जा रहे हैं। परिणाम न भोगते हुए हत्या करने तक की उनकी मजल की पहुंच है। उनके इस तत्वज्ञान से मनुष्य तकदीर का गुलाम बनेगा। मखली गोसाल के स्वीकार करने पर खाना पीना और मजा करना, अजीत केश कंबल के विचारों से जीवन भटकता रहेगा। संजय बेलपुत्ता के कारण सिर्फ सन्यास और तपश्चर्या में उलझा रहेगा जीवन। निगंठनाथ पुत्र के कारण तत्वज्ञान ही मनुष्य की भलाई का, उनके कल्याण का, उनकी आजादी का, आजाद विचारों का। मनुष्य बुद्धिवादी हो वैसे वह सद्गुणी भी हो, कर्मकांड विरहित हो, प्रज्ञा उसके पास जीने के लिए नैतिकता का अधिष्ठान हो, हो विवेक और विज्ञान दृष्टि में उनके। बा तथागता तूने अध्यात्म को परखा विज्ञान और विवेक से, संस्कृति संवर्धन के लिए संस्कृति की बलशाली धारा तूने तैयार की, और पंचशील ने नैतिकता का पाठ पढ़ाया, और अष्टशिला ने तेरे नैतिक अन्वेषण को अधिक सूक्ष्म बनाया। तू नहीं था तीव्र भाव से उच्छेदवादी या कर्मकांडी, तेरा मार्ग बीच का मध्यम मार्ग, अध्यात्म से कर्मकांड हटाकर विद्यानिधिष्ठित तर्कपूर्ण विवेकी दृष्टि का, इसीलिए तुम उच्छेदवादी नहीं हो, ना ही अंधश्रद्धालु एवं धर्मांध। तेरा मार्ग मानवता के विकास का, मनुष्य कल्याण का मध्यम मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मनुष्य के संस्कार का मानवतावादी। बात तथागता तेरा धम्म सिखाता है नैतिकता और उगाता है फसल प्रज्ञाशील करुणा की।

0: शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि खुशी शायद होंठों तक सीमित है, चाहे शायद मेरी हंसी तक सीमित है, चाहे मैं जब बच्चों के साथ होता हूं तो जो खिलखिलाहट होती है वहीं तक सीमित है, लेकिन वो हंसी है, खिलखिलाहट है। खुशी मेरे अंदर की बात है, मेरे अंदर की वो फीलिंग है जो मैं खुद क्रिएट कर पाता हूँ। अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि लगता था कि यही सब बातें जो बाहरी रीति से हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, उसी पर खुशी निर्भर करती है, और निर्भरता बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस श्रृंखला में जहाँ हम बातें करने लगे हैं, वहाँ ये बात समझ में आती है कि ये मेरी अपनी क्वालिटी भी है और मेरी अपनी क्रिएशन है। मज़ेदार बात यह है कि उसे क्रिएट करने के लिए मुझे अपने थॉट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं संकल्प कर रहा हूँ, जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं। अब थॉट्स आ रहे हैं या मैं उन्हें क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी एक नई वोकैबुलरी के साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कुछ और बातें हैं जिनका हम रिकैप करेंगे, लेकिन पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। मैं थॉट तक तो ले आई कि जब हमने उस फीलिंग को देखा कि खुशी कहाँ है, मैंने देखा कि ये सब में ढूंढ रहे थे, ये सब में समझा वो नहीं है, क्योंकि हमने जब अपने आप को चेक किया तो वो खुशी मेरी अपनी क्रिएशन मुझे समझ में आई, और मेरा थॉट मेरी उस फीलिंग को क्रिएट कर सकता है। पॉजिटिव खुश वाला थॉट जो था वो क्रिएट करता है। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, और ये जो इतना पावरफुल चीज़ है, इतनी शक्तिशाली वस्तु मेरे पास है, अनुभव कहें या कुछ भी कहें, एनर्जी कहें, वो कैसे क्रिएट होता है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो थॉट्स क्रिएट करती हैं?
1: हमने जैसे देखा कि परिस्थितियाँ आती हैं, लोग ऊपर नीचे कई बार हमारे साथ व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, एंड थिंग्स वर बिकमिंग चैलेंजिंग, अनप्रडिक्टेबल। यू नो, सडनली समबडी बिहेव्स इन अ वेरी अनप्रडिक्टेबल वे, एंड आई डोंट नो हाउ टू रिस्पोंड। तो कभी ना कभी ये एक थॉट चलना शुरू हुआ कि आखिर इस तरह से अगर जीवन चलती जाएगी तो देर इज जस्ट नो वे आई कैन बी हैप्पी। तो फिर हमने जो हैप्पीनेस के ऑपोजिट वाली फीलिंग्स हैं, सॉरी, चाहे वो एंग्जाइटी है, वरी है, उनको स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि यस, सिचुएशंस आर चैलेंजिंग। तो सिचुएशन पर थॉट डिपेंडेंट है, तो यस, हमेशा खुश रहना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हमेशा सिचुएशन फेवरेबल नहीं होने वाली है। हमेशा रिश्तों में हर चीज मेरे अनुसार चले, ये नहीं होने वाला है। लोग मेरी एक्सपेक्टेशन को हमेशा मीट करें, ये नहीं होने वाला है। आप जैसा मैं सोचूं वैसा बिहेव करें, ये नहीं होने वाला है। सो इफ माई हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। देन वी रियलाइज्ड के सिचुएशन तो बाहर से आती, थॉट हम करते, और अगर हम अपने आप को देखना शुरू करें और अपने आप को चेंज करना शुरू करें, हो सकता है हम उसी परिस्थिति में थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील कर सकते। पहली बात तो हैप्पीनेस क्या है, you know, that also is a question mark. We really don't know what we are talking about. क्या हम excitement की बात कर रहे हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा कुछ उमंग उत्साह उस तरह की बात कर रहे हैं। Happiness doesn't mean always that you are jumping up and down, like that's not happiness. कहीं कुछ बात हो गई है, घर में कोई हादसा हो गया है, किसी कोई illness है, somebody has left the body. So there is not question, आप बोलोगे इस टाइम हाउ कैन आई बी हैप्पी, येस दिस टाइम आई कैन नॉट बी हैप्पी, बट कैन आई बी स्टेबल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इज इट दैट पेन एंड सोरो ये नेचुरल ही है, ये क्रिएट करना है, क्योंकि जितना हम स्टेबल रह सकेंगे उतना हम उस सिचुएशन को अच्छी तरह से क्रॉस कर सकेंगे। और स्टेबल रहने के लिए मुझे उस सिचुएशन में राइट काइंड ऑफ थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने देखा जो थॉट हम क्रिएट करेंगे उस क्वालिटी की फिर हमें फीलिंग्स जेनरेट होंगी, वो फिर हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा, फिर हमारी पर्सनैलिटी बनती जाएगी, एंड देन माई डेस्टिनी। और थॉट्स पर

0: बिलीव्स के साथ अपना जीवन जी रहे हैं. एंड आई फील पर्सनली कि ये तीनों में से इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम में, बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है. क्योंकि इन्फॉर्मेशन ठीक है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो क्या फीड करना क्या नहीं फीड करना. पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमने देखा कि हम बैठ कर उसके ऊपर वर्क करें तो वी कैन क्लीन इट ऑफ. लेकिन बिलीफ सिस्टम इज समथिंग दैट बचपन से शुरू होते होते एज आई वॉज ग्रोइंग मेरे अंदर बहुत गहरे डीप रूटेड है. एंड समटाइम्स आई डोंट इवन रियलाइज कि मेरे कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं.
1: बिलीफ सिस्टम इन द सेंस कि बिलीफ सिस्टम बने कैसे, पूरा एनवायरनमेंट था मेरा क्या ऐसा है चीज़
0: बिलीफ सिस्टम बनाती है. बिलीफ सिस्टम बनने के लिए भी इट कुड बी एनवायरनमेंट, इट कुड बी जो हमें सिखाया गया यू नो बचपन से. लेट्स से कि एज अ चाइल्ड मैंने ये देखा कि जब भी मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे डांटा गया है ना, या जब भी मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मेरे पेरेंट्स के अनुसार राइट नहीं था तो मुझे डांटा गया. अब ये इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मैंने देखी कि दिस इज द वे, तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम बना कि जब भी कोई कुछ ऐसा करे
1: जो आपको पसंद ना हो,
0: आपको राइट ना लगे, तो उसको चेंज करने का तरीका उसको डांटो. तो ये मैंने सीखा ना. इट्स नॉट दैट किसी ने मुझे सिखाया बैठकर, लेकिन मैंने वो सिनारियो से, मैंने सबको अपने आसपास वो करते हुए मैंने वो बिलीफ सिस्टम बनाया, दिस इज द वे इट वर्क्स. तो ये हम बिलीफ सिस्टम्स बनाते गए. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम औरों पर ब्लेम कर दें कि जो भी बिलीफ सिस्टम के लिए, हमें फिर अपने जीवन में आज स्टॉप करके चेक करके देखना पड़ेगा कि वो बिलीफ सिस्टम क्या रिजल्ट क्रिएट करता है. यू नो हर एक बिलीफ, यू नो इट्स लाइक अ कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर बहुत पावरफुल एक सिस्टम है जो हमारे पास है, तो एक कंप्यूटर को चलाने वाला जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम. उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी के पास विंडोज है तो किसी के पास मैक है तो कुछ भी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि सारे प्रोग्राम्स जो उस पर चलेंगे
1: वो कैसे चलेंगे.
0: तो ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना,
1: दिस
0: इज लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये इसको टाइम टू टाइम थोड़ा सा,
1: इसको तो बहुत सारी चीज, अब जैसे यही एक बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि दर्द के साथ रहना तो नेचुरल है.
0: क्या एब्सोल्युटली ये एक नेचुरल है. आज टेंशन होना तो नेचुरल है. हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं,
1: कभी खुशी कभी गम,
0: ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है. विच इज ओके, नो वन इज टू चैलेंज माई बिलीफ सिस्टम, आई हैव टू चैलेंज इट माई सेल्फ. मुझे खुद अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ है एक मान्यता है.
1: लेकिन बिलीफ जो है वो एक्सपीरियंस भी तो बन रहा होगा ना.
0: यस,
1: तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, मेरा अनुभव ये कह रहा है, और उसको मैंने बिलीव, जैसे बचपन में भी मैं देखती आई जो, तो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव होते गए, अनुभवों को मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया.
0: तो अब सपोज मैंने बचपन में ये सीखा कि जब भी कोई गलती करे तो उसको गुस्सा करो, ठीक है, तो मैंने भी ये पकड़ लिया. या मैंने ये सीखा कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे गुस्सा करते हैं ना तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, जब नहीं गुस्सा करते ना
1: तब मैं,
0: तो मैं नहीं पढ़ती, तो मेरा अपना मस्ती चलती रहती है. लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे डांटा तो मैंने पढ़ा, तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम बना कि किसी से अगर काम करवाना है तो काम करवाने का तरीका क्या है, उनको डांट दो ना, वो काम कर देते हैं. नाउ आई टुक दिस बिलीफ सिस्टम एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद इट इन माई लाइफ. तो चाहे वो मेरे ऑफिस में है, चाहे वो मेरे घर पर है, आई एम वर्किंग विद दिस बिलीफ सिस्टम कि किसी से काम करवाना है उनको डांट दो. काम भी हो रहा है, लेकिन क्या मेरी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर उसका इफेक्ट होता है? क्या मेरे रिश्तों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है? एक तरफ से आई एम सेइंग मुझे हैप्पीनेस चाहिए, हर एक कह रहा है मुझे खुशी चाहिए, दूसरी तरफ से मैंने बिलीफ सिस्टम बनाया कि गुस्से से काम होता है. हैप्पीनेस एंड एंगर, ये दोनों इकट्ठे कैसे रहेंगे? हाउ विल इट हैपन? आज मुझे रोज काम करना है, रोज लोगों से काम करवाना है, एंड रोज मैं इसी बिलीफ सिस्टम से काम कर रही हूँ कि गुस्से से काम होता है, गुस्से से काम. तो एनर्जी क्रिएट हो रही है अंदर गुस्से वाली, दिस एनर्जी गोज आउट एंड देन द सेम एनर्जी कम्स बैक. तो इतना गुस्सा क्रिएट कर के सारा दिन, देन व्हाई एम आई सेइंग कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए?
1: काम तो होता गया ना, तो मैं तभी उसको यूज करूंगी ना जब काम नहीं हो रहा होगा.
0: राइट, तो आप काम करवाने के लिए उसको यूज कर रहे हो ना, लेकिन हमने कभी स्टॉप करके लाइफ में ये चेक करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए जीवन में. ठीक है, सपोज हमने कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि गुस्से से काम होगा, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है. लेकिन मैं चाहती हूँ कि वंस आई वर्क विद दिस प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर मुझे रिजल्ट कुछ और चाहिए. अब रिजल्ट तो वो वाला नहीं आ रहा ना, रिजल्ट खुशी नहीं आ रही, गुस्सा बार बार करने के बाद खुशी रिजल्ट नहीं हो सकती। तो अगर वो रिजल्ट

0: रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन में अपनी जीवन को जीती हूँ कि इंस्ट्रक्शन कुछ और फीड करती जा रही हूँ और रिजल्ट कुछ और एक्सपेक्ट करती जा रही हूँ. करूँ गुस्सा, करूँ चिंता और चाहिए खुशी, तो कहाँ से होगी. नाउ अब गुस्से से काम भी क्यों करवा रहे हैं, चाहिए तो खुशी, लेकिन दूसरा बिलीफ सिस्टम ये बना हुआ है कि काम जितना होता जाएगा
1: खुशी
0: सफलता
1: मिलती
0: मिलती जाएगी, जितनी सफलता मिलेगी उतनी खुशी मिलेगी. वी नीड टू स्टॉप एंड चेक, दीज आर बिलीफ
1: तो
0: सिस्टम्स.
1: ये तो पूरी जिंदगी मेरे बिलीफ सिस्टम पे जुड़ी
0: पूरा
1: हुई।
0: सब कुछ तो बिलीफ सिस्टम पे है. हर दैट्स व्हाई वी सेड इट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम. जिस क्वालिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम है सब कुछ उस पर बेस्ड है, सारा कुछ उस पर बेस्ड होगा. सारा दिन में हमें पता भी नहीं चलता हम कितने सारे बिलीफ सिस्टम्स के साथ काम
1: तो
0: करते
1: अभी तो हमें
0: हैं.
1: पूरा विंडोज खोलना पड़ेगा। वो इट्स अ बिग प्रोसेस एक्चुअली।
0: या बट द थिंग इज के बिलीफ सिस्टम एंड वन इज द ट्रुथ. इज दिस द ट्रुथ? एंगर इज नेचुरल. ये एक बिलीफ है या ये एक सत्यता है, ये मुझे अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. ये जो बिलीफ सिस्टम्स, अगर हम एक भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ चले, सी द क्रिटिकल पार्ट क्या है. बिलीफ से थॉट क्रिएट होगा, थॉट से डेस्टिनी क्रिएट हो रही है. अगर मेरा एक भी बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आएगा?
1: मेरी डेस्टिनी पे।
0: मेरे डेस्टिनी पर आएगा. एंड दैट्स वाई स्टॉपिंग एंड चेकिंग माई बिलीफ सिस्टम सारा दिन में, अगर आपके साथ कुछ भी बाहर आप जो एनर्जी डाल रहे हैं, आपके साथ जो हो रहा है, कहीं आपको अंदर डिस्टर्बेंस फील हो रही है, जस्ट हैव टू स्टॉप एंड चेक मेरा कौन सा बिलीफ सिस्टम इसमें काम कर रहा है. एंड आपको अपना बिलीफ सिस्टम उसी टाइम दिखाई दे देगा इमिजिएटली. आपको सिर्फ वो इक्वेशन बनाकर रखनी है अपनी लाइफ में. बिलीफ इज इक्वल टू थॉट इज इक्वल टू डेस्टिनी. बीच का भी बहुत ज्यादा नहीं छोड़ो उसको, दैट तो वो ऑटोमेटिकली इट्स वर्किंग. जैसे ही आपके अंदर कोई थॉट क्रिएट हुई, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम दोनों बैठे हैं, अभी चार लोग आते हैं सामने, एंड वो चार लोग मेरे से नहीं बात करते, वो चार लोग ज्यादा आपके साथ ही बात करने लग जाते हैं. यू नो दे प्रेजिंग यू एंड दे अप्रिशिएटिंग यू, एंड आई एम नॉट फीलिंग नाइस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा. ठीक है ना, मुझे अगर फीलिंग के लेवल पर दिखाई देता देन आई विल गो बैकवर्ड्स. आई विल से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कौन सी वाली थॉट क्रिएट हो रही है इसके पीछे,
1: डिस्टर्बेंस
0: क्या
1: है।
0: थॉट क्रिएट हो रही है? तो थॉट ये क्रिएट हो रही है, इज शी बेटर देन मी, इज इट दैट पीपल लाइक हर मोर, दिस काइंड ऑफ थॉट्स आई एम क्रिएटिंग, और ये थॉट इज मेकिंग मी फील
1: लो
0: लो. अब इसके पीछे मुझे बिलीफ सिस्टम अपना चेक करना पड़ेगा, कौन से बिलीफ की वजह से मैंने ये थॉट क्रिएट की. मेरा बिलीफ वो था कि जितना लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे
1: उतनी
0: उतना
1: मैं
0: आई
1: अच्छी
0: एम अ
1: हूं।
0: बेटर पर्सन.
1: ओ गॉड,
0: माई बींग गुड, वर्दी, नाइस, वट एवर लेबल हमें लेना
1: आई
0: है,
1: थिंक यू सॉल्व सच अ बिग प्रॉब्लम।
0: इट इज बेस्ड ऑन लोगों का अप्रिसिएशन, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं इवैल्यूएट कर सकती. तो वो बिलीफ सिस्टम ने क्या किया, तुरंत जैसे ही मैंने वो चार लोगों को आपको अप्रिशिएट करते हुए देखा, मैंने, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इमिजिएटली द थॉट इज देन आई एम नॉट अ गुड पर्सन, शी इज अ बेटर पर्सन, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, पीपल डोंट लाइक मी. अभी उसके बाद फीलिंग कौन सी क्रिएट होगी?
1: और उसके साथ साथ और इसके साथ जुड़ी हुई और बाकी और गंदी गंदी फीलिंग्स भी आ सकती हैं, यू नो, लाइक ये एक्चुअली जेलेसी स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर।
0: यस, द जेलेसी किस बेसिस पर स्टार्ट हुई?
1: तो इट हैज नथिंग टू डू विद मी एंड यू,
0: इट हैज नथिंग,
1: इट हैज एक्चुअली टू डू विद अ बिलीफ सिस्टम व्हिच एक्चुअली अगर मेरे सामने आए तो मुझे कहेगा कि लोगों से क्या फर्क पड़ता है।
0: एब्सोल्युटली.
1: लेकिन वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं मैंने फिट किया।
0: हाँ, तो अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, अगर हम उसको बिलीफ सिस्टम के लेवल पर चेक कर लेंगे कि कौन सा बिलीफ मेरा वर्क हुआ, क्योंकि यहां पर यही बिलीफ वर्क हुआ कि जितना लोग जिसको अप्रिशिएट करते वो ज्यादा अच्छे
1: अच्छा
0: हैं,
1: है।
0: एंड जहां ये लोग मेरे पास बात करने नहीं आए, मतलब आई एम नॉट गुड. नाउ दिस बिलीफ सिस्टम कैन बी वेरी वेरी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी, और ये डिस्टर्बेंस के कारण मैं जेलस फील करूंगी, फिर मैं अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए लोगों के सामने मैं आपको
1: बुराई
0: क्रिटिसाइज करूंगी.
1: करो।
0: इट्स नथिंग टू डू विद यू एक्चुअली, आप बहुत जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन मुझे अपने आप को फील करवाना ना. अब इससे रिस्क ये होगा कि भले आपके सामने नहीं, लेकिन अपने आप को ही अच्छा फील करने के लिए मैं आपकी बुराइयां देखना शुरू कर दूंगी कि क्या है इसमें, क्या अच्छा लगता है, इनको क्या पता ये एक्चुअली कैसी है, इनको कुछ मालूम, यू नो, एंड माई इंटेलेक्ट, माई माइंड विल स्टार्ट गोइंग एंड लुकिंग एट
1: एंड यू नो हियर दिस डेस्टिनी इज क्रिएटेड बिकॉज आपकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी. यू नो आप दूर होते जाते हैं ऐसे ही.
0: अब जब मैं ये एनर्जी क्रिएट करूंगी तब एक्चुअली लोग मेरे से परे हटेंगे. एक्चुअली हटेंगे क्योंकि मैंने कौन सी एनर्जी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी, नेगेटिविटी की, जेलेसी की. फिर हो सकता है जब मुझे चांस मिले मैं उन्हीं चार लोगों के पास जाकर इनडायरेक्टली थोड़ी सी आपके बारे में बुराई करना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं बहुत अच्छी हूं. तो मैं उनको बोल दूंगी आपको क्या पता है कानुप्रिया के बारे में, इनडायरेक्टली, ताकि नेक्स्ट टाइम दे विल कम टू मी बिकॉज एंड नाउ आई एम एक्चुअली टेकिंग देम अवे फ्रॉम मी ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन बिलीफ सिस्टम. अब अगर उसी सीन में मैं अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करूं, आई एम हु आई एम, आई नो हु आई एम, आई एम नॉट परफेक्ट, आई नो दैट वेरी वेल कि मेरे अंदर अपनी कमजोरियां हैं, अपनी शक्तियां हैं, लेकिन उन पर मुझे ही काम करना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या किस बेसिस पर मेरे पास आते हैं, दैट डजंट मैटर. ये जर्नी मेरी अपनी है. तो मेरा आपके साथ जो कंपैरिजन करने की यात्रा होगी, दैट विल स्टॉप. हु आई एम इज बेस्ड ऑन हाउ आई नो माई सेल्फ, नॉट बेस्ड ऑन हाउ पीपल अप्रिशिएट मी और से टू मी. यस, ये नेचुरल है कि अगर आप एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, लेकिन वो बेंचमार्क नहीं है. लोगों का आपके पास आना, लोगों का आपके साथ अच्छी तरह से बात करना, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. इट इज डेफिनेटली नॉट नेसेसरी. आज के समय में वी कैन सी इट, इट इज पॉसिबल कि आई डोंट लाइक यू और फिर भी मैं आपके पास आऊँ, आपके बारे में बहुत अच्छा बोलूँ. एंड अगर आप उस बेसिस पर अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे तो वो तो बहुत रिस्की है. मुझे अपने आप को खुद इवैल्यूएट करना आना चाहिए. बट फॉर दैट आई विल हैव टू चेंज माय बिलीफ सिस्टम कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है और मुझे अपने उस पर काम करना है, अपनी कमजोरियों पर. लोग क्या कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हैं. हाँ, लोग जो कहते हैं आई कैन टेक दैट एज अ फीडबैक, बट जस्ट टेक इट एज अ फीडबैक एंड वर्क विद माई सेल्फ. तो एक एक बिलीफ सिस्टम मेरे थॉट पर एंड फिर मेरी डेस्टिनी पर काम करता है. और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं इसमें मेरा क्या है, ये तो इनकी वजह से हुआ. It is totally
1: of course, because of you know, and what happens? And suddenly I realize that this is where the friendship starts, you know, soaring up.
0: वो तो destiny for the future. And it's not only about friendship. मैं कितने दर्द से गुजरने वाली हूँ अंदर. मेरे अंदर वे जो inferiority complex हमारे अंदर आ जाता है. क्यों आ जाता है? हम अपने आप को किसी के साथ compare करते हैं. ये भी तो एक belief system है. कॉम्पिटिशन
1: कि अगर मैं मुझे अच्छा होने के लिए या मुझे जीतने के लिए किसी को तो हारना ही है. जिंदगी एक हार जीत है.
0: जिंदगी एक हार जीत है. बताओ ये बिलीफ सिस्टम हमारा बना है.
1: जिंदगी इज लाइफ इज अ वॉर,
0: लाइफ इज अ गेम.
1: यस,
0: लाइफ अगर गेम बोलेंगे, लाइफ इज अ गेम, तो इट ऑलवेज बी के दे विल बी अ विनर एंड दे विल ऑलवेज बी अ लूजर. अब अगर मैं इस बिलीफ सिस्टम के साथ चलूं कि इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ गेम, इट्स अ वॉर, तो मैं सारा दिन क्या करूंगी औरों के साथ?
1: खेल खेलती रहूंगी ना, गेम खेलती रहूंगी.
0: यस, एंड सारा
1: दिन गेम खेलने में मैं जीत हार को देखती रहूंगी, कौन जीता कौन हारा.
0: एब्सोल्युटली. और जैसे ही अगर मुझे कहीं दिखाई दिया कि आप जीत रहे हैं, तो मैंने कुछ भी कर देना है आपसे आगे निकलने के लिए, चाहे वो ऑफिस में इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे आपको क्रिटिसाइज करके आपको नीचे गिराना है. मतलब आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि लाइफ इज अबाउट मी गोइंग अहेड ऑफ यू. दिस इज अ बिलीफ सिस्टम. तो एक बिलीफ सिस्टम मेरे पूरे अंदर की सोच को, मेरी फीलिंग को सारा चेंज कर सकता है. एक बार तो रुक कर देखें, वेयर इज द कॉम्पिटिशन.
1: किस बात का कॉम्पिटिशन? मेरा जो ये थॉट क्रिएट हुआ है वो किस बिलीफ सिस्टम पे है?
0: स्टॉप करके देखना पड़ेगा. क्या इसके पीछे मेरे अंदर, दिस हैपेंस स्लोली. ऑब्वियसली वो एकदम से पहले दिन पर नहीं होगा, लेकिन कई बार जब भी आपके बिलीफ्स आपको ध्यान में आए, यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन, क्योंकि इतने सारे बिलीफ्स हैं हमारे, इतने सारे बिलीफ्स हैं कि सपोज मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए मुझे. ये मेरा बिलीफ सिस्टम है. अगर आपने नहीं अप्रिशिएट किया तो मुझे बुरा. क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, जब मैंने किसी के लिए कुछ किया तो अप्रिसिएशन तो मिलनी ही चाहिए. प्रेज तो मिलना ही. इट्स सो नेचुरल.
1: सी, इट इज नेचुरल. मतलब अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो यू शुड एटलीस्ट अप्रिशिएट.
0: जैसे जैसे हम अवेयर होते जाते हैं, हमें इमेज इटली पता चल जाता है. नहीं, मैंने किया क्योंकि मैं करना चाहती थी. या बिलीफ सिस्टम, अगर मैंने आपके लिए अच्छा किया तो आप भी तो रिटर्न में अच्छा ही करोगे. बिलीफ सिस्टम है
1: तो वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा करेगा.
0: क्या जरूरी है आज के वो अच्छा करेगा?
1: वो किस थॉट प्रोसेस में, और अच्छा, और अच्छा क्या और होता क्या है?
0: अच्छा और बुरा तो मेरे रेफरेंस पॉइंट से है ना, अच्छा और बुरा आपके रेफरेंस पॉइंट से तो है ही नहीं, आप अपने अनुसार तो हमेशा अच्छा ही कर रहे हो वैसे भी, लेकिन मेरा बेंचमार्क वो
1: ये बना रखा है मैंने. ओह यस, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आपने मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आती हूँ, मैं आप जब बीमार हो जाते हो मैं आपकी इतनी केयर करती हूँ, मैं बीमार हो गई पूछा तक नहीं आप
0: ना से. फिर थॉट कौन से क्रिएट हुई, फीलिंग कौन से क्रिएट हुई, अगली बार मैं नहीं करूंगी आपके लिए. डेस्टिनी, दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग. नेक्स्ट वी चेंज आवर बिलीफ सिस्टम एंड वी से मैं वो करूंगी जो करते हुए
1: मुझे अच्छा
0: लगता है, नॉट मैं वो करूंगी ताकि इन रिटर्न आप करेंगे, क्योंकि उस बिलीफ सिस्टम से मुझे क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला,
1: हर पेन, यस रिजेक्शन पेन अननेसेसरीली, यू नो, एंड देन वी स्टार्ट प्रेशराइजिंग द अदर पर्सन आल्सो.
0: एब्सोल्युटली,
1: यू नो, वी स्टार्ट एक्सपेक्ट, यही एक्सपेक्टेशंस आने लगती हैं फिर.
0: मैंने आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया, या मैंने आपके लिए इतना पूरी जीवन मैंने आपके लिए ही किया, आपने क्या किया. तो ये बिलीफ सिस्टम्स की चेकिंग क्यों जरूरी है, बिलीफ सिस्टम्स को धीरे धीरे चेंज करते जाएं और वो वाले बिलीफ सिस्टम्स एस्टैब्लिश करें जो हमारे जीवन को स्मूथ, इजी एंड हैप्पीनेस हम क्रिएट कर सकते हैं. इफ आई कैन चेंज माय बिलीफ सिस्टम एंड आई कैन से आई विल डू व्हाट आई वांट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, इज इट पॉसिबल टू लीड?
1: सेइंग इट इज इजी,
0: दैट्स एक बार से, हां तो डूइंग विल कम विद प्रैक्टिस ना, ठीक है ना, एक बार भी नहीं होगा. पेन
1: अगेन, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि बार बार हम जो बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, अगर मैंने कुछ किया हुआ है किसी के लिए और वो वापस, या मेरी जब सिचुएशन आई तो उसने वैसे नहीं रिएक्ट किया या नहीं किया, तो वो जो पेन है उसमें मैं उस वक्त तो हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकती,
0: नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो प्रोग्रामिंग अपनी कर ली थी कि मैंने आपके लिए किया
1: तो मुझे आपको करना ही,
0: आपको करना ही है. यू सी, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि जिसके लिए मैं अच्छा करूंगी उसको मेरे लिए अच्छा करना ही है. जैसे ही वो अगर नहीं करते हैं या वो उस तरह से नहीं कर, सी एवरीवन इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, हो सकता है आपकी नेचर है कि आप बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब आप डिनर होस्ट करेंगे तो आप इतना कुछ कर देंगे, आप गिफ्ट्स देंगे तो इतने देंगे, आप मेरे लिए कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी. मेरे लिए आप घर पर आओगे तो मैं पूछूंगी आप चाय पियोगे क्या, यू विल से लाइक आप मेरे घर आए थे तो मैंने तो पूरा डिनर आपके लिए बनाया था और आप मुझे पूछ रहे हैं चाय पियोगे कि नहीं पियोगे, यू आर हर्ट. You don't feel anything
1: of
0: for me.
1: Of course, I'm hurt. I'm badly hurt. You know, we get hurt.
0: Yeah. Now, this is, we are talking on physical things. And yehi same cheez.
1: Emotional.
0: Subtle. Emotional level par bhi work hoti. Ki jitna main aapke liye kar rahi hoon, mera ye belief hota hai, aap bhi usi proportion mein mere liye karenge. Ye bahut deep belief system hai. Aur yahan kahin na kahin fir hum,
1: और ये हम justified, see, we say that this is right, it should be like this, yes. But then we have to check कि वो मुझे pain दे रहा है, it means it's not right.
0: That's big, yeah, that belief system is definitely not right. क्योंकि हर एक का personality different है, हर एक का सोचना, हर एक का करना, it's not that they're wrong, वो bad है, लेकिन उनका right and wrong different है. आप जितना करते हो, मेरी capacity नहीं है, मैं उतना नहीं कर पाती, लेकिन क्योंकि आपने ये बिलीफ बनाया था कि मैं उतनी ही कैपेसिटी में करूंगी, आप हर्ट हुए जब मैं नहीं करती. अब आप अपने बिलीफ को अगर थोड़ा सा चेंज करो कि मैं आपके लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये करते हुए मुझे अच्छा लगता है, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी एक्सपेक्टिंग टू मच इन रिटर्न. यहाँ तक कि लाइक वंस आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग फॉर समवन, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे रिटर्न में, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई जस्ट लाइक डूइंग इट, तो मैं कर रही हूँ. लेकिन होता ऐसे कई बार कि वो अच्छा तो कुछ नहीं किया रिटर्न में, लेकिन किसी ने हो सकता है कि एकदम
1: धोखा दे दिया,
0: कुछ गलत कर दिया, कुछ बहुत, एंड आई फेल्ट हर्ट, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा, एंड देन आई थॉट अबाउट इट, आई सेड ये भी तो एक्सपेक्टेशन है, ये भी एक्सपेक्ट, हम ये सोच रहे थे, मैं वेरी डीप बिलीफ सिस्टम, मैं ये सोच रही थी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, मेरे को करने दो, मुझे करते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने बुरा कर दिया, तो दैट ऑल्सो यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशन,
1: एटलीस्ट आप कुछ मत करते.
0: सो मैंने वो बिलीफ बनाया था कि मैं अच्छा करूंगी, आप कुछ मत करना, लेकिन आपने जो मैंने सोचा, लेकिन आपने तो कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरे ऊपर कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ गया, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेशन था. तो इफ आई कैन चेंज माई बिलीफ सिस्टम टू मैं वो करूंगी जो मुझे ठीक अच्छा लगता है,
1: विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और विदाउट एनीथिंग,
0: यू नो हाउ सिंपल माय लाइफ विल बिकम.
1: Oh yes, but right now too I am realizing how much we need to do, in the sense that how much we need to understand, you know, it's a major shift ki one रियलाइजिंग कि जहाँ मुझे बुरा लगने शुरू हो उस समय हमें रुक जाना चाहिए. एक्चुअली वी शुड नॉट ट्राई टू मूव अहेड, वी शुड लुक एट कि कौन सा बिलीफ सिस्टम है जिसने मेरा ये थॉट क्रिएट किया. अगर आपके पास कोई मन में सवाल उठता है, कोई बात अभी लग रहा है कि इससे जुड़ी हुई है, तो आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत मेजर नया बिलीफ सिस्टम हमने किया है कि जितने भी जो भी नेगेटिविटी मुझे होती है उसके पीछे कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम है जिसे चेंज किया जा सकता है. वो चेंज कैसे होगा वो हम अगली कड़ी में जानेंगे, लेकिन अभी सिस्टर शिवानी आज एक बहुत मेजर हमें अगेन हम कहेंगे एक चाबी है, एक कुंजी है, एक की है टू एक्चुअली सॉल्व द यू नो इट्स की टू हैप्पीनेस बेसिकली. सो लेट्स रिफ्लेक्ट फॉर सम टाइम एंड सी हाउ इट वर्क्स विद अस.
0: कंफर्टेबल होकर बैठे, वी नॉट डूइंग एनीथिंग अननेचुरल, अपने आप को ही देखने की कोशिश करते हैं. बहुत सारी मान्यताओं के आधार पर जीवन चलता आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में अपने अनुभवों को देखते, अगर वो अनुभव, वो फीलिंग्स कंफर्टेबल नहीं लगती, तो अपनी मान्यताओं को चेक करो. वो बिलीफ्स जो हम समझते थे कि यही सत्य है, लेकिन ट्रुथ is always comfortable. Truth will always make me feel peaceful. Somewhere there is a confusion. Happiness is natural. Happiness is unconditional. Happiness is my creation. Meri khushi मेरी अपनी रचना है, ये किसी पर भी आधारित नहीं है, ये मेरे हाथ में है. आज इस बिलीफ को लेते और सारा दिन की यात्रा पर चलते हैं और चेक करते क्या अनुभव होता है. ओम शांति.
1: ओम शांति. जिस तरह से साइलेंस में बैठकर हमने अपने सबकॉन्शियस को, आपने पहले भी कहा था कुछ कुछ बीज बोने की ज़रूरत है, सो आज साइलेंस में बैठकर अपने साथ इस एक बिलीफ सिस्टम को डालने की कोशिश की है और ये प्रयास संभव रहेगा कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी अपनी वैल्यू है एंड आई कैन बी हैप्पी एनी टाइम आई वॉन्ट. इसी के साथ हम आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि इस श्रृंखला में जो जो हम सीख रहे हैं उसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे. ओम शांति.

0: विद्यार्थी काल की बात है। विनोबा को बचपन से ही पढ़ने की धुन थी। उनका बचपन बड़ौदा में ही बीता। बड़ौदा के राजा स्वर्गीय सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्थापित भारत की अच्छी एवं प्रसिद्ध सेंट्रल लाइब्रेरी को विनोबा जैसा पाठक मिल गया। उस पुस्तकालय का सबसे अधिक उपयोग करने वालों में शायद विनोबा अग्रणी होंगे। एक दिन पुस्तकालय के व्यवस्थापक ने विनोबा से पूछा था कि यदि एक के बदले आपको तीन किताबें पढ़ डालते, यही है ना? कभी पूछते कि यहाँ की एक भी किताब ऐसी है जो आपकी नजर से न गुजरी हो? उसी पुस्तकालय का एक प्रसंग।
1: 40 साल पहले मैं बड़ौदा कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज की छुट्टी के दिनों में भारत की सबसे बड़ी बड़ौदा की सेंट्रल लाइब्रेरी में रोज दोपहर को मैं खा पी कर जा बैठता। 2-3 घंटे सहज ही निकल जाते थे। गर्मी के दिन रहते थे इसलिए मैं कमीज निकाल कर खुले बदन बैठता था। एक दिन वहाँ काम करने वाले एक भाई मेरे पास आए और बोले,
2: आपका ड्रेस डिसेंट ड्रेस नहीं है, पोशाक कैसी पहननी चाहिए यह समझना चाहिए।
1: भगवान ने मुझे जो समझ शक्ति दी है उसके मुताबिक ही मैं कपड़े पहनता हूँ।
0: जवाब देकर विनोबा पढ़ने में मगन हो गए। पुस्तकालय के प्रबंधक गोरे साहब, जो तीसरी मंजिल पर बैठते थे, उनके पास शिकायत पहुंची कि नीचे एक विद्यार्थी खुले बदन पढ़ने बैठता है और कहने पर भी किसी की सुनता नहीं है। विनोबा को तुरंत ऊपर बुलाया गया। गोरे साहब शर्ट पतलून पहने थे, कोट निकालकर दीवार पर लटका दिया था, हैट टेबल पर पड़ा था, सिर पर पंखा घूम रहा था। उनका मिजाज उन दिनों अंग्रेजों का जैसा साधारणतः रहता था वैसा ही था। उनके सामने विनोबा जी को खड़ा कर दिया गया। उन्होंने विनोबा के खुले बदन की ओर निर्देश करते हुए पूछा,
3: क्यों अच्छी सभ्यता आती नहीं है?
1: जी, मैं तो अपने देश की सभ्यता जानता हूँ।
3: क्या है तुम्हारे देश की सभ्यता?
1: जो मनुष्य खुद कुर्सी पर बैठे और दूसरे को खड़ा रखे उसे हमारे देश में असभ्य मानते हैं। और हमारे देश में और एक सभ्यता यह है कि जब बहुत गर्मी होती है तब बदन खुला रखना चाहिए।
0: शिवाजी जयंती का दिन, विनोबा ने अपने मित्रों से कहा कि आज हम शिवाजी जयंती मनाएंगे।
4: कैसे, कहाँ चलकर मनाएंगे?
1: चलो हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, मुक्त आकाश के नीचे जंगल के स्वतंत्र वातावरण में शिवाजी की जयंती मनाएंगे। स्वातंत्र प्रेमी शिवाजी की जयंती किसी घर के कोने में ड्राइंग रूम में थोड़ी मनाई जाएगी।
0: जयंती मनाना तो तय हुआ, परंतु उस दिन स्कूल में छुट्टी नहीं थी। सबने मिलकर तय किया कि उस दिन इतिहास का घंटा छोड़ देंगे। वहां घंटा छोड़कर सब गए जंगल में। खूब श्रद्धा से जयंती मनाई, परंतु वापस लौटते समय चर्चा की, घंटा छोड़ा है उसकी जो सजा होगी उसका क्या?
1: हम सबको 4-4 आना साथ में रखना चाहिए। मास्टर साहब यदि नाराज हो जाएं तो 4-4 आना दंड का दे देना है।
0: सबको ये विचार जज गया। दूसरे दिन सब 4-4 आने लेकर स्कूल पहुंचे। इतिहास का घंटा शुरू हुआ।
5: कल तुम लोग कहाँ गए थे?
6: सर, शिव जयंती मनाने जंगल में गए थे।
5: क्या शिवाजी जयंती स्कूल में नहीं मनाई जा सकती थी?
1: गुलाम खाने में कहीं शिवाजी जयंती मनाई जाती है क्या?
5: तुम सब बदमाश हो, तुम सब पर जुर्माना करूंगा मैं।
6: ये है आपका जुर्माना, हम लेकर ही आए हैं।
0: सबने 4-4 आने जुर्माने के तौर पर भर दिए। मास्टर साहब बेचारे ठंडे पड़ गए। विनोबा दूसरे गंभीर विषयों का अध्ययन करने या घूमने के लिए रोल कॉल हाजिरी के बाद निकल जाते। रोज 15 मील का चक्कर तो सहज हो जाता था। वे कहते हैं कि
1: बचपन में यदि घूमने की तालीम मुझे ना मिली होती तो भूदान यज्ञ की इतनी पद यात्रा मैं नहीं कर सकता था।
0: एक बार विनायक को शाला की ओर से पुरस्कार मिला। उनसे पूछा गया कि इनाम में कौन सी किताब चाहिए।
1: मुझे तो दास बोध चाहिए।
5: इस उम्र में क्या सन्यासी बनना है?
0: विनायक को जब दूसरा 15 रुपए का इनाम मिला तो वो अन्य किताबों के साथ एक नाथी भागवत भी खरीद लाए। विनू का एक मित्र वो किताब पढ़ने के लिए घर लेकर गया। उस मित्र के पिता धार्मिक वृत्ति के थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनका लड़का इस उम्र में एक नाथी भागवत पढ़ रहा है तो उन्होंने उसको डांटा, ये क्या भागवत पढ़ने की उम्र है? अपना अभ्यास छोड़कर क्या फालतू धंधा करता है? विनू को जब पता चला तो विनायक ने कहा,
1: धार्मिक कहे जाने वाले बाप के ये विचार हैं, तब फिर आर्थिक बाप का क्या होगा, प्रभु जाने।
0: धर्म और व्यवहार के बीच जो खाई है उसको पाटने का काम संत जन करते आए हैं। धर्म और अध्यात्म मंदिर मस्जिद में और गीता पाठ तथा माला फेरने में रहे, और व्यवहार में असत्य अनीति आदि सब कुछ चले, इस तरह दो अलग अलग विभाग संतों को कभी मंजूर नहीं होते। धर्म कोई फालतू धंधा नहीं है, वही जीवन है, वही जीवन का अधिष्ठान है। इंटर की परीक्षा के दिन नजदीक थे, विनायक की तैयारियां भी हो चुकी थी, फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं था, परंतु विचार चक्र कुछ दूसरी धुरी पर घूमने लगा था। एक दिन माँ रसोई बना रही थी और विनया आकर चूल्हे के पास बैठा, उसके हाथों में कुछ कागज थे। एकाएक कागज गोल गोल करके चूल्हे में झोंकने लगा, तब माँ ने पूछा,
7: विनया यह क्या जला रहा है?
1: मैंने कहा, मैट्रिक आदि परीक्षाओं के सर्टिफिकेट जला रहा हूँ माँ।
7: क्यों रे?
1: मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है।
7: अरे भले आदमी, आज जरूरत नहीं है तो भी पड़े रहने से तेरा क्या बिगड़ेगा?
0: माँ ने विनायक के भविष्य की चिंता में कहा, परंतु विनोबा की नीति मूले कुठाराघात की थी। वे कहते हैं कि
1: मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, कुछ काम धीरे धीरे करने के होते हैं, परंतु कुछ काम धीरे धीरे करने के नहीं होते हैं। उनमें तो एकदम रस्सी काटनी होती है, एकदम निर्णय लेना होता है। जैसे सिंहगढ़ की लड़ाई में तानाजी के सेनापतित्व में सब मराठे सैनिक वीरतापूर्वक लड़े, परंतु जैसे ही तानाजी मरा वैसे ही सब हिम्मत हार गए और भागने की चेष्टा करने लगे। तब तानाजी के भाई सूर्या जी ने सबको कहा, कहाँ भागते हो, किले से नीचे कूदने की रस्सी मैंने पहले ही काट दी है। और फिर इस पार या उस पार सोच करके सब सैनिक लड़े और सिंहगढ़ के स्वामी बने।
0: सन 1916 की बात है, 25 मार्च का दिन इंटर की परीक्षा देने के लिए मंडली बंबई की ओर रवाना हुई। विचार चक्र तो चालू ही था, निर्णय नहीं हो पा रहा था।
1: ये छोटी मोटी कागजी परीक्षाएं देकर जीवन का क्या उद्धार होने वाला है? लक्ष्य तो है ब्रह्म प्राप्ति, उसी के साधन स्वरूप जो भी प्रवृत्ति हो उसी का जीवन में स्थान हो। तब फिर ये सब नाटक क्यों? ये बंबई जाना, परीक्षा देना, पास होना,
0: ये सब मंथन चल रहा था। गाड़ी बड़ौदा स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ रही थी। मियां गांव गया, भड़ोज गया, सूरत स्टेशन आया। सूरत से दो रास्ते फटते थे, एक जाता था बंबई की ओर, दूसरा जाता था भुसावल की ओर। विनायक ने अपने साथी भोला से पूछा,
1: भोला क्या विचार है, गृह त्याग कर काशी चले?
0: जब दोनों का गृह त्याग करने का निर्णय हुआ और काशी जाने पर सहमति हुई, उस वक्त रास्ते में से ही विनायक ने माता पिता को पत्र लिखा,
1: विन्या अब समाप्त हो गया, समझ लीजिए कि अब आपका पुत्र चल बसा है। आपको उतना विश्वास तो मुझ पर होगा ही कि मैं कहीं भी जाऊं मेरे हाथ से कोई अनैतिक काम नहीं होगा।
8: अरे यह तो मूर्ख है, पूछ कर जाता तो मैं थोड़े ही ना करने वाला था, परंतु मुझे आशा है विनय थोड़े ही दिनों में भटक कर वापस लौट आएगा।
7: नहीं, आप जैसा सोचते हैं वह नहीं होगा। मैं विनय को अच्छी तरह से जानती हूँ, विनय एक बार जो बोला उसमें फर्क नहीं पड़ेगा।
0: और माँ की वो बात सही निकली, विनोबा की निश्चय शक्ति बचपन से ही प्रबल थी। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए निश्चय शक्ति अनिवार्य है, ऐसा विनोबा मानते हैं। वे कहते हैं कि
1: 1912 में मुझे घर छोड़ने का विचार पहली बार आया, परंतु मैंने घर छोड़ा 1916 में। उतने समय में मैंने अपनी निश्चय शक्ति को कसौटी पर कसा, फिर जो निश्चय किया सो किया, उसमें पीछे मुड़कर नहीं देखा। निश्चय करने से पहले जितना सोचना हो सोच लेना चाहिए, संकल्प शुभ है, इतनी प्रतीति हो गई तो फिर चिंता नहीं, क्योंकि शुभ संकल्प हो तो ईश्वर हमें अनुकूल है ही। फिर सारा जगत प्रतिकूल क्यों ना हो।
0: ऐसा दृढ़ निश्चयी लाडला बेटा जब घर छोड़कर निकल गया, तब पड़ोस की बहनें इकट्ठी होकर माँ से कहती है, क्या करे, आजकल के लड़के होते ही ऐसे हैं, माँ बाप की कोई परवाह नहीं, निकल पड़े घर छोड़कर।
7: खबरदार, ऐसा कहा तो मेरा वीना कोई नाटक चेटक जैसी शूद्र वस्तु के लिए घर छोड़कर नहीं गया है। उसने तो अथेति ब्रह्म जिज्ञासा गृह त्याग किया है। देश और ईश्वर की सेवा के हेतु से वह गया है, उसका मुझे गौरव है।
0: अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। 1916 में विनोबा ने घर छोड़ा और काशी पहुंचे। उनका एक मित्र भोला भी उनके साथ था। काफी मजबूत और मन का जवान था। गंगा का पूरा पाट तैर कर जाता और वापस लौट आता। 3 फरलांग तो था ही। दैववशात विनोबा के उस एकमात्र साथी का अवसान काशी में ही हुआ। मानो वो शरीर छोड़ने के लिए ही काशी पहुंचा था। विनोबा उसकी मृत्यु की कहानी सुनाते हैं।
1: घर छोड़ने के बाद मेरा मित्र भोला मेरे साथ था, काशी में भी साथ था। नाम जैसा ही वह भोला था। गंगा किनारे जाता था और पंडे लोग रोकते थे, पूछते थे, तुम्हारे पिता का नाम क्या? यह नाना कहता रहता, परंतु पंडे पीछे पड़ते थे। कहते थे, पैसे मत देना, तर्पण करा लो। और भोला ने विधि करा ली और फिर पैसा देने के लिए ना कहा तो भी उसके हाथ में 1 रुपया रख दिया। शाम को आकर मुझसे बताया तो मैंने कहा कि गलती हो गई। उसने भी स्वीकारा कि भूल हो गई।

0: विनायक, बेलगांव से कोई नारायण महाराज आए हैं, चलो मिलने चलेंगे।
1: भोला, संत पुरुषों से मिलने के पहले पूछताछ करनी चाहिए। तुम्हारे आग्रह पर मैं चल तो रहा हूं, पर हम दूर से ही खड़े रहकर सुनेंगे।
2: दोनों दूर खड़े होकर सुनने लगे। किसी ने सवाल पूछा, महाराज आप कहां से आए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, नारायण का निवास सर्वज्ञ है। ये सुनकर विनोबा ने भोला को खींचा। एक ही प्रश्नोत्तर से विनोबा की श्रद्धा गई।
0: अरे तुमने मुझे क्यों खींच लिया?
1: मैंने कहा, अरे तुमको यही सुनना था तो मैं तुमको कब का उपनिषद सुनाता। उन्हें सीधा जवाब देना चाहिए था।

0: परंतु दो ही महीने में एक कठिन प्रसंग उपस्थित हुआ। भोला बीमार हुआ और बीमारी एकदम गंभीर होती चली गई। लगा कि अब जाने के दिन नजदीक है। तब विनोबा ने पूछा,
1: मैंने पूछा घर पर खबर पहुंचानी है?
2: क्या जरूरत है? घर के साथ अब क्या संबंध? परलोक जाने पर कभी ना कभी तो खबर पहुंचेगी ही।

0: मृत देह को अग्नि कौन लगाएगा? तुम्हारी क्या इच्छा है?
1: तुम ही लगा देना।
0: मैंने कहा ठीक है।
2: वो मरेगा इसमें तो उसको भी शक नहीं था, क्योंकि भोला को पेट का रोग था। दूसरे दिन भोला मर गया। विनोबा के लिए ये पहला प्रसंग था। कभी शमशान में जलाने के लिए गए नहीं थे। विनोबा के पास स्कूल की नौकरी के 4 रुपए बचे थे। उतने में चाहे जितनी शमशान यात्रा निकाल सकते थे, परंतु मुख्य तो लकड़ी का खर्च करना था। गंगा के किनारे पर मंत्रोच्चारण के साथ अंतिम विधि की। दूसरे दिन अन्न क्षेत्र की चर्चा चली कि इन लोगों ने भड़ाग्नि दी। इस पर विनोबा ने जवाब दिया,
0: अरे गंगा की महिमा अपार है, उनके किनारे भड़ाग्नि दिया तो कौवा भी स्वर्ग में चला जाएगा, भोला तो सीधा स्वर्ग में पहुंचेगा।
2: दलील करने में विनोबा पीछे रहने वालों में से नहीं थे। इस तरह उन्होंने भोला को विदाई दी